FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं।

0: यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलरमरो मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम

जब जीवन के मार्ग कठिन लगने लगते हैं, जब मन विचलित होता है, तब श्री राम की शरण में आने से ही मन को वह आधार मिलता है जो हर दुख हर भ्रम को दूर कर देता है।

इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। स्वर है श्रीकांत परगांवकर का।

विलाप करती सीता को रावण अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। युवा साथियों के लिए युवाणी का समय रहेगा शाम 5:30। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय पुण्यतिथि व देशबंधु चित्तरंजन दास पुण्यतिथि। शाम 6:20 पर कार्यक्रम गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय से श्लोक 16 और 17 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर रेणु वत्स की। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7 सुनेगा कार्यक्रम ग्राम संसार। शाम 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात का। शाम 8 सुनेगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुबह 7:40 पर सुनेगा हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाज जाए नगाड़ा। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनेगा सुबह 8:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सुन सकेंगे सुबह 10। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें में रात 10। शाम 5 सुनिएगा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा गुमशुदा व मृतक सूचना। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:45 से 10 तक, दिन में 11 से शाम 5 तक और रात्रि 9:15 से 10 तक। ये थी आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 सुनिएगा हिंदी में समाचार और 7:05 पर इंग्लिश न्यूज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमैंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोक सेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो काडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
0: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती भी झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों।
2: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
3: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
3: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
4: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
5: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
4: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
5: यस।
3: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे।

0: जिनमें एक जॉन्सी भी थी, वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 14
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी।
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।

0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: टू, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी। मंद मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। पर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
2: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
4: ये लो कॉफी पियो।
3: थैंक यू
4: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
4: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
4: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
4: हाँ वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
4: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
3: ओ गॉड,
4: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
4: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
4: हाँ,
3: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
4: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
3: पेंटिंग?
4: हाँ।
3: कैसी पेंटिंग?
4: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
3: ओह, तो वो पेंटिंग है?
4: हाँ।
3: असली पत्ता नहीं है?
4: नहीं।
3: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
4: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
3: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
4: हाँ जॉन्सी,
3: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
4: हाँ, उन्होंने बना दिया।
3: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू। हाँ मास्टरपीस।

0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
1: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर या आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। आज के कलाकार हैं ज्ञानी राम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी आपने सुना हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
4: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
3: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य

0: इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो
1: संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अतीत जा चुका है और भविष्य आपकी कल्पना है। भविष्य के बारे में तनाव मत लीजिए, वह अभी तक आया ही नहीं। केवल वर्तमान ही हमारी वास्तविकता है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। इसी विचार के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज़।

श्रोताओं, जून का महीना चल रहा है और इसी महीने हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग और खेल दोनों ही शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ये तो देशों के बीच मित्रता, प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सशक्त मंच है। अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख खेल आयोजनों की, तो उनमें से एक है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये समय समय पर नए खेलों को अवसर देकर अपनी पहचान को और अधिक व्यापक बनाता रहा है। चलिए, आज का प्रश्न इसी से संबंधित। आज आपको बताना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस नए भारतीय खेल को शामिल किए जाने की घोषणा की है। आज आपको बताना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किन नए भारतीय खेलों को शामिल किए जाने की घोषणा की है। इस सवाल का जवाब आप हमें SMS के माध्यम से दीजिएगा हमारे नंबर 9466021336 पर 8:45 तक।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस की, जो हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन करोड़ों प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए विदेशों या फिर अपने गृह क्षेत्र से दूर रहकर काम करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से अपने परिवारों को भेजते हैं। और ये जो पैसे भेजे जाते हैं, इसे ही प्रेषण कहा जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की पहल पर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था दुनिया भर में प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक योगदान को पहचान देना। भेजे गए पैसों से परिवारों की दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने में सहायता मिलती है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ पर रोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। किसी इमरजेंसी या फिर आर्थिक संकट के समय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा प्रेषण राशि प्राप्त होती है। विदेशों में कार्यरत भारतीय अपने परिवारों को धन भेजकर न केवल अपने घरों का जीवन स्तर सुधारते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाते हैं। श्रोताओं, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि परिवारों की खुशहाली और सामाजिक विकास में अपने घर से दूर गए लोगों का, बाहर काम कर रहे श्रमिकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके परिश्रम, त्याग और समर्पण के कारण ही लाखों परिवारों के सपने साकार हो रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के अवसर पर हम सभी उन प्रवासी श्रमिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, जो अपने परिवारों की खुशियों के लिए घर से दूर रहकर बहुत ही मेहनत करते हैं और अपने प्रेम, अपने जिम्मेदारी को प्रेषण के माध्यम से अपने घर तक, अपने परिवार तक पहुंचाते हैं।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योगपति और समाजसेवी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी को, जिनकी पुण्यतिथि हर वर्ष 16 जून को मनाई जाती है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल में हुआ था। बचपन से ही वे मेधावी और जिज्ञासु थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए और भारतीय विज्ञान को नई दिशा प्रदान की। 1896 में मर्क्यूरस नाइट्राइट नामक रासायनिक यौगिक की खोज की, जिसे उनके प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों में गिना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में उनके शोध कार्यों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि स्वदेशी उद्योगों के समर्थक भी थे। सन 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जो भारत की पहली स्वदेशी रासायनिक और औषधि निर्माण कंपनियों में से एक थी। उनका मानना था कि वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण और समाज के विकास के लिए होना चाहिए। वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सादगी, राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना, यह उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। 16 जून 1944 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और उद्यमियों को प्रेरणा देते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से

0: संपर्क करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरू में हमने आपसे पूछा था कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किन भारतीय नए खेलों को शामिल किया जाएगा, और इसका सही जवाब है योगासन, मलखम, खो खो और कबड्डी। अब आपको बताते हैं उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया है। रविदास नगर कुरुक्षेत्र से हैं अश्विनी कराड़िया कृतिका और सूबेदार अमरनाथ। नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। संबरपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। बलारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और समीक्षा भारशंकर। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया छत्तीसगढ़ से। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। जयश्री और सुनील बेंगलोर से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस। मसूरी रोड रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। शिलाई हिमाचल प्रदेश से ललिता सिंह और भगवान सिंह। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। ग्राम कदुआपड़ा जिला जगत सिंहपुर उड़ीसा से कविता साहू और प्रमोद कुमार साहू। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुडाने, अर्चना ताई गुडाने और हीरामन शेंडे। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग और विकास गोयल। छप्परवाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी और लीबा मलिक। गांव पद्मा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह और पलवी शाह। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़।

पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसु, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू, बुल्ढाना वडशिंगी से अमोल मानकर और सहदेव दामोदर, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से सरोज सैनी, राकेश सैनी और यादवेंद्र सैनी, सांगली से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, देरपाटन गुजरात से धीरजवी रबारी, बिहार से डब्ल्यूला बेलदार, वलीउल्ला बेलदार और सोनम वली बेलदार, मंडीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और लवली, दरियापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, मंगल पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम और मोहम्मद अफजल, सादुलशहर राजस्थान से रामकुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनर, नेहा जैन और दीपक, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण भाटे, संदीप भाटे, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण गुजराती, जगदीश गुजराती और हिरेन भाई, ग्राम नगर कोहरा से बबलू साहू, जामनी देवी साहू, आराध्या साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा कामड़े, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चामोरिया, असलम वली और सरफुद्दीन वली चामोरिया, नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से, रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और शरीफ नवाज, ग्राम भाना ब्राह्मणावाला नरवाना से मेघराज शर्मा, ग्राम मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, वंश और भुवेश कुमार कंबोज, बीपी गौतम, सरिता गौतम, एटारोज गंडुनवारा उत्तर प्रदेश से, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित दिशानी, काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशो, सुषमा सुरोशो और मायरा सुरोशो, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और वसीम अकरम, सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा और सुनैना हुड्डा, सरगुजा बिहार से फातिमा थापा, सोनम थापा और आसमा थापा, ग्राम हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला गुदारा और इंदु, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और मेघा राशि, बलरामगेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम और सद्दाम सोनी, दरियापुर बड़वाहा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और आनंद जोशी, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अनिल घोड़के, वैशाली अनिल, अंबाई छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और आशीष राज।

सांगली जिले के जज शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुता हुजरे और सबाहत हुजरे। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी और अनीता सैनी। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, मानवी और तन्वी। रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जोरी और लड्डू कुमारी। लाडवा से चांद ढींगरा, ईशु और एमी। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। कोटवा नारायणपुर बाबा पटिया बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु तुलसी मस्कीन। हमारे अगले श्रोता हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हिना सईद खोकर। मागीराम सैनी, पूनम सैनी गांव प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से। कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा उत्तर प्रदेश से। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे और अंजलि करवा। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और मास्टर अल कबीर। गांव गाला जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। श्रोताओं ये थे वो सभी श्रोता जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब दिया और कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। एक हमारे श्रोता रह गए हैं एसएम जावेद गुमला झारखंड से।

श्रोताओं, आज हम श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात विधिवेता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय भक्त चितरंजन दास जी को, जिन्हें पूरा देश प्रेम से देशबंधु चितरंजन दास यानी कि देश का मित्र कहकर पुकारता था। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके महान जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को नमन करते हैं। चितरंजन दास जी का जन्म 5 नवंबर 1870 को बंगाल में हुआ था। वे सफल वकील थे, लेकिन देश की पराधीनता ने उन्हें कभी चैन से सोने नहीं दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख, वैभव और सफल वकालत के जीवन को त्याग कर खुद को भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। जब राष्ट्र को नेतृत्व और साहस की जरूरत थी, तब देशबंधु ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों में स्वदेशी आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना का भाव जगाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग और समर्पण से सिद्ध होता है। देशबंधु जी का हृदय गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए सदा ही धड़कता था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और अवसर प्राप्त कर सके, और उनकी उदारता और इसी सेवा भाव के कारण लोग उन्हें अपना सच्चा हितैषी मानती थी। 16 जून 1925 को उनका निधन हो गया। उनके निधन से स्वतंत्रता आंदोलन को गहरा आघात पहुंचा। कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रमाण था कि देश ने अपना एक सच्चा पुत्र खो दिया। उनके जाने का दुख केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति के रूप में महसूस किया। देशबंधु चितरंजन दास जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। त्याग, सेवा, सत्य और देश प्रेम के उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थे। देशबंधु चितरंजन दास जी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 MHz पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए अभिजीत की आवाज में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए मिलिंद इंगले की आवाज में।

इसी के साथ कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर

बनाना ना। 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्म।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र,

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये जो वाणी है जो हमारे मुख से निकलती है, यही हमारे जीवन का वातावरण रचती है। अगर हम मधुर मीठा बोलते हैं तो शांति और प्रेम हमारी ओर आकर्षित होते हैं। वहीं अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो कलह और विपत्तियां हमारा साथ देती हैं। हमारा ये जो संसार है ना, ये हमारी वाणी से ही संवरता भी है और बिगड़ता भी है। इसीलिए वाणी ही है जो हृदय को सुख भी देती है और दुख भी। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। इसी विचार के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज। उससे पहले आपको बता दें, जल्दी से अपना फोन नंबर, वही जाना पहचाना, 0174-221-322। तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए।

मिलाइए हमारा नंबर, कीजिए हमसे ढेर सारी बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। तो जब तक हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं, आनंद लीजिए इस गीत का।

0: से ही बोल रहे हैं। हाँ जी कृष्ण कुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो सिलाई का काम करूँ जी।
0: गाँव में ही?
1: हाँ जी गाँव में ही है मेरी दुकान
0: जी। फिर तो सिलाई के साथ साथ तो रेडियो सुनने का बहुत वक्त मिल जाता होगा।
1: मैं 1980 से सुन रहा हूँ जी
0: रेडियो,
1: बहुत ही पुराना श्रोता हूँ आप
0: जी। तो क्या अपनी प्रतिक्रियाएं और... भी देते हैं?
1: हैं जी,
0: खत के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से या फिर ईमेल के?
1: नहीं वो सब मेरे को अंदा नहीं है जी करना, बस ऐसे ही मतलब
0: सुनते हैं बस।
1: फोन तो मिला लूंगा जी।
0: जी जी जी, चलिए बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये प्रेम रोग का है जी।
0: जी,
1: ये गलियां ये चौबारे
0: जी। आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी,
1: जी, नमस्कार।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बंसीलाल हूँ, गांव जज्जामोरी, जिला अंबाला।
0: बंसीलाल जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: हाँ, बल्ले बल्ले, ठंडा हो गया जी, मौसम ठंडा हो रहा है।
0: चलिए, अच्छी बात है। फिर तो बहुत दिन से बहुत गर्मी थी, थोड़ी सी राहत मिल गई है ना?
1: धान की रुपाई होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आप? खेती
1: मैं
0: बाड़ी?
1: खेती बाड़ी करता हूँ जी।
0: जी, तो खेत तैयार कर लिए धान के लिए?
1: हाँ, खेत तैयार है जी, बस पानी छोड़ेंगे 20 दिन को। हाँ
0: जी,
1: जी,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये हमारे दो साथी हैं, दो जा रहे हैं,
0: जी
1: उनके नाम ले देंगे।
0: जी बिल्कुल लीजिए।
1: ये रणजीत सिंह जरूरी,
0: जी
1: हमारा सिंह जी है,
0: जी
1: गुरमेजो भी है हमारी सिंह, उसको भी नमस्कार, वो
0: जी
1: भी रेडिया सुन रही होगी।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छी
1: हाँ,
0: बात है।
1: रवि कुमार राहुल बराड़े से,
0: जी
1: मनोज कुमार डेंजर मार्टर भजूड़ी
0: जी
1: से, इन सब का धन्यवाद है। ठीक
0: जी चलिए
1: है,
0: सभी।
1: ठीक।
0: जी गीत बताइए।
1: गीत दिन में इज्जत का ही,
0: जी
1: क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी
0: छुपी
1: रहे।
0: रहे। बहुत बढ़िया है। तो गीत के माध्यम से कहते हैं ना, जो सच्चाई है वो बयां होती है।
1: हाँ जी, हाँ,
0: चलिए आनंद लीजिए इस गीत का। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है जी।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैडम। मैडम
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: गांव श्यामगढ़ से मुस्तकीन।
0: मुस्तकीम जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप
1: ये मालिक का दुआ आप लोगों के।
0: जी? आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे
1: हमराज का सुना देते हैं,
0: जी।
1: पुराने हमराज है। इसके गाने के बोल रहे हैं नमो भूपा।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: हेलो
4: हेलो
3: नमस्कार जी कौन बात कर रही हैं?
4: मैं संतोष गांव से नाहरलगुन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ।
3: संतोष जी आपका स्वागत है, कैसी हैं आप?
4: ठीक है दीदी, आप सुनाइए कैसे हो?
3: हम बहुत बढ़िया हैं। क्या करती हैं आप?
4: कुछ नहीं दीदी, घर का काम करते हैं।
3: तो इस टाइम तक तो हो गया होगा सब घर का काम?
4: जी अब तो घर का काम हो गया सारा।
3: अच्छा चलिए बढ़िया है, अब आराम से फ्री होके आप रेडियो सुन सकती हैं, है ना?
4: जी मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सुनती
3: हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। मौसम कैसा है वहाँ पर?
4: बस मौसम दीदी बारिश हो रही है।
3: तो ठंडा हो गया?
4: हाँ जी अब ठंडा हो रहा है।
3: तो वैसे तो ठंडा ही रहता होगा, इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी यहाँ मैदानी इलाकों में पड़ती है।
4: जी यहाँ से हरे इलाके में ना कम पड़ती है गर्मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?
4: गीत फिल्म का गीत सुना दीजिए।
3: गीत के बोल बताइए।
4: तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी वो अलग
3: है। जी आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
4: धन्यवाद दीदी।

श्रोताओं, जीवन में हम सभी अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारा अपना घर हो, सम्मानजनक जीवन हो और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा हो। ये ऐसे सपने हैं जो एक गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान देखता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और ये सपने साकार करने के लिए केवल कमाई नहीं बल्कि थोड़ी सी बचत या यूं कह लीजिए संतुलित निवेश भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर हम संतुलित निवेश करते हैं तो धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ धन लाभ कमाना ही निवेश का उद्देश्य है? आजकल बहुत बार ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि एक साल में पैसा डबल, आप यहाँ पर पैसा लगाइए और अपना पैसा डबल कर लीजिए। और शायद एक, दो या तीन लोगों का वो करते भी होंगे, लेकिन ये मायाजाल है। आप खुद सोचिए कि एक साल में कोई पैसा डबल कैसे कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात है ऐसे जालसाजों से, ऐसी अफवाह कह लीजिए ये, क्योंकि सच नहीं है, ये सच के करीब भी नहीं है, इनसे दूर रहिए। निवेश करना बहुत ज़रूरी है, निवेश आपका संतुलित भी होना चाहिए और सुरक्षित भी। मान लीजिए आपने एक ही जगह निवेश कर दी अपनी सारी बचत और भगवान ना करे अचानक उस निवेश में नुकसान हो जाए, तो जो वर्षों की मेहनत है और उस मेहनत के साथ जुड़ी हुई जो उम्मीद है उनको गहरा आघात पहुंचता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पैसा निवेश करें उसे अलग अलग साधनों में संतुलित रूप से बांट लें। ऐसे में क्या होता है, जोखिम कम हो जाता है और आर्थिक सुरक्षा बढ़ जाती है। संतुलित निवेश का अगर हम अर्थ समझें तो यानी कि आपकी आय, आवश्यकताएं, आपकी उम्र और आपके भविष्य को ध्यान में रखकर जो निवेश किया जाए वो संतुलित है। कुछ धन सुरक्षित योजनाओं में निवेश कीजिए, कुछ दीर्घकालिक विकास के लिए, और कुछ ऐसा भी निवेश होना चाहिए जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, यानी कभी अचानक से अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आपको मिल सके। ऐसा ना हो कि आपने किसी पंचवर्षीय योजना में धन निवेश कर दिया और आपको आज ही पैसे की ज़रूरत है। तो धन तो है आपके पास, सुरक्षित भी है, निवेश भी किया हुआ है, लेकिन सही समय पर आप उसका उपयोग कर ही नहीं पा रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि निवेश करें समझदारी से। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है और अगर हमारी बचत केवल घर में रखी रहे, जिसे कह रहे थे ना पहले गृहणियाँ क्या करती थी, थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आटे चावल दाल के डिब्बे में रख लिए और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर लिया, लेकिन वो घर में छुपा कर रखे हुए पैसे, वो आपकी बचत तो है लेकिन वो आपका निवेश नहीं। वो घर में रखे हुए पैसे बढ़ेंगे नहीं, वो उतने के उतने ही रहेंगे, जबकि महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए कि वो भी बढ़े, जो आप अपनी आय में से कुछ हिस्सा निकाल कर निवेश कर रहे हैं समय के साथ वो भी बढ़े। निवेश

0: केवल पैसों का प्रबंधन नहीं, बल्कि ये अपने परिवार की खुशियों, बच्चों के, अपने माता पिता के सपने और उनके जीवन की सुरक्षा का संकल्प भी है। एक समझदारी भरा निवेश आज की छोटी सी बचत को कल की बहुत बड़ी उपलब्धि में बदल देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि निवेश करें, सोच समझ कर करें, जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, समृद्ध हो और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये आपका कदम हो। अब देखते हैं कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, जिसे हो प्यार भरा नमस्कार
0: जी। कौन बात कर रहे हैं?
1: महेंद्र शाह, रेडियो श्रोता, डीएलएफ होता सकते
0: जी। हमारे बहुत ही पुराने श्रोता महेंद्र शाह जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी। परमाता है मेरे, आप लोगों की दुआएं हैं
0: जी।
1: परमात्मा आपको, आपके परिवार को लंबे बर दे, फलो फलो सदा खुश रहो, करोड़ों खुशियां दे, तंदुरुस्ती बख्शे, मेहर बरात रखे
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभेच्छाओं के लिए। महेंद्र शाह जी, आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कल मेरी महेंद्र मोहन जी से बात हुई थी, बता रहे थे
0: जी
1: 100 बार तक रिकॉर्डिंग करेंगे स्थापना दिवस की।
0: जी जी जी।
1: आज मुझे वो कौन सी फिल्म का गाना सुनवा दो
0: जी। गीत बता, बोल बताओ। हाँ जी, बोल बताइए गीत के।
1: फिल्म वो कौन सी
0: जी?
1: मनोज कुमार सादरा जी थी, मदन मोहन जी यहाँ संगीत है, राजा मेन यह अली खान गीतकार है, लता जी यहाँ गया हुआ है। जो हमने अपनी सुनाई आप क्यों रोए
0: जी। आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है, कभी सरल कभी कठिन, कभी खुशियों से भरी तो कभी चुनौतियों का सामना कराती हुई। और इस यात्रा में अगर हमारे पास दो गुण हैं तो हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं, और वो जो दो गुण हैं वो है धैर्य और साहस। अगर बात करें कामयाबी की राह की तो ये दोनों गुण एक दूसरे के पूरक हैं और सफलता की मजबूत नींव भी बनाते हैं। साहस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, यह हमें अपने डर, संकोच और असफलताओं का सामना करने की शक्ति देता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब रास्ता कठिन लगने लगे और जब ऐसा लगे कि मंजिल बहुत दूर है, तब साहस ही हमें पहला कदम उठाने का हौसला देता है। लेकिन सिर्फ साहस से बात नहीं बनती। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लगातार प्रयासों के बाद भी हमें परिणाम नहीं मिलता, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, और ऐसे समय में हमें संभालता है धैर्य। धैर्य हमें सिखाता है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, हर सपना साकार होने से पहले संघर्ष की अग्नि से गुजरता है। सोचिए, एक पर्वतारोही है जो ऊंची चोटी पर पहुंचने का सपना देखता है। साहस उसे चढ़ाई शुरू करने की प्रेरणा देता है, लेकिन धैर्य उसे हर कठिन मोड़ पर, हर थकान, हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर साहस पहला कदम है तो धैर्य उस कदम को मंजिल तक पहुंचाने वाली शक्ति है। बहुत जरूरी है कि जीवन की हर चुनौती का सामना हमें साहस और धैर्य के साथ करते रहना चाहिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब देखते हैं कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश सैनी कीर्ति नगर से बोल रहा जी।
0: ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, बढ़िया, धन्यवाद जी।
0: जी, गीत बताइए कौन सा सुनेंगे आज? टाइटल सॉन्ग जी, आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: रंग तरंग
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से, ये गीत लिखा लकी अली ने, और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: झोला दबाए रखा,
1: छुपाए रखा, झोला दबाए रखा।
0: राज ये हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, वो हमको तो

ना दबाए रखा,

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। अलीशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने। संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी

0: मंत्री हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान, ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, ए आर रहमान की आवाजों में एक गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से, माफ कीजिए श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और ए आर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और चिन्मय की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा एआर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर, मैं हूं अनुराधा, आज आपके सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिक
0: से आपके सामने पड़ दी है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैं

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉ जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉ रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भय हो रहे हैं।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योग का प्रस्ताव जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने भारत की इस पहल को खुले दिल से स्वागत किया। जब ये प्रस्ताव यूएनओ के अंदर आया तो 170 देशों ने इसका खुलकर के समर्थन किया। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था। हम सबको गर्व है कि पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
0: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल जींद जिले के नरवाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लगभग 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले जन स्वास्थ्य विभाग के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनहित एवं विकास कार्यों की प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के संकल्प को धरातल पर उतारा गया है। अब इस जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल स्तरीय आधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और उन्नत उपकरणों से सुसज्जित यह प्रयोगशाला क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रयोगशाला में स्वच्छ कार्य वातावरण, आधुनिक सुरक्षा प्रबंध तथा कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे जल गुणवत्ता की जांच अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा सकेगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पलवल में आयुष विभाग द्वारा आगरा चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम तक योग मैराथन का आयोजन किया गया। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में स्काउट्स एवं गाइड सहित विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉ हमीदुल्ला ने कहा कि योग

0: ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं जिससे बाजार का माहौल प्रभावित होता है तथा ग्राहकों और परिवारों के आने जाने में असुविधा होती है। मार्केट कमेटी ने कब्जों और अवैध रेड़ी फड़ी विक्रेताओं की समस्या भी उठाई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: वो है मोहब्बत का रंग और साधारण दिनों को खास बना देता है। वो है मोहब्बत का रंग, जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नज़र में तो बहुत आते हैं, अब जो नज़रों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर ज़िंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफ़ी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत।

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही ख़तों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो ख़त लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने ख़त, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा ख़त, कुछ पंक्तियाँ कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, SMS पर नहीं, WhatsApp पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत, और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से एक खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूँ वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है मेरे ख्याल से, और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएं, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपये में फिल्म देखी थी। 160 रुपये का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है।

और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हों, या कोई पुरानी याद जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है। मुझे लिख भेजिए, इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है। और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहाँ उनकी सारी यादें ताज़ा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहाँ जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहाँ पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाज़त चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफ़र में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

0: सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में, मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने

0: सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज़।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं
2: जी,
1: उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही हैं, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़ें, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें, जीवनी पढ़ें,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन की जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
2: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि घर परिवार

0: भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में। ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
0: हाँ हाँ हाँ, ये तो होता है,
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है।
0: हाँ,
1: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
0: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
1: किस तरीके से चीज को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
0: क्या बात है,
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है।
1: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
0: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की कही है,
1: अक्सर
0: विषय रखा है
1: हो जाती है
0: घरेलू बजट, बाप रे,
1: जिस पे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे।
0: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है।
1: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे, और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: गीत जी।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी,
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी FAD ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने परिवार को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम

0: स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी होती
1: होती कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो थी हम पूरी
0: कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानित देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी,
0: बिल्कुल
1: जरूरी नहीं आपको पता हो
0: उसके, आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता।
0: हाँ।
1: वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि कौवा
1: कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता।
0: हाँ।
1: तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं हटा किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना
1: भारती।
0: तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल। और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
0: से हो गया, आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल सही,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए। क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
0: अपनी
1: मत
0: सफाई देना।
1: हाँ, उसको वही सफाई ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी
0: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं, तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: है ना। एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो ये चीज सही है ना, देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब उनके होते हैं,
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और इसके जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखे, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है, लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
0: समझ
1: चाहिए,
0: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
0: क्योंकि
1: ये चाटुकारिता में आता है।
0: और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है,
0: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है।

0: जी
1: इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर आरती आज तारीफ नहीं की।
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती हूँ।
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
1: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम
0: गीत सुनवा दें। जी

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल। और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसीलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल। और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल। और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यवसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल। उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है। और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक साबित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल। तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है। चाय की तरह
1: जी।
2: जरा नजरों से

0: तो दूर के ढोल सुहावने कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये करो, गुस्सा
1: शुरू हो जाती है,
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: सुंदर लगता है, हम उसकी तुलना करते हैं चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही हैं। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारी श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
0: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
1: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्मपत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि उनको लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज़ बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनवाना चाहेंगे।
2: जरूर।

0: वहीदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना है, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने कहते जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है। मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले आप, मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब? तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखिए, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही, आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मैं मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होकर टीवी लगाऊँ, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना मैं उतना इंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी एक ही के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल,

0: वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
1: वो फिल्में देख लें आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओह मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है। साहब बीबी गुलाम का तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला।
1: हेमंत कुमार साहब की आवाज़।
0: हाँ हेमंत कुमार साहब की आवाज़ वो बहुत अच्छा था।

0: वीना जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज़ टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, ऐसे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वाज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: चखा,
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत

0: याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम। शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे, जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी। राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे, मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ, यानी तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे अपने, संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी, और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज़ टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो, बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था, और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजों ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजू ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको
1: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वाज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की ज़रूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सब ने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफ़ा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
0: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
1: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
0: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
1: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विद यू, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर.
0: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
1: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम.
0: जी जी.
1: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो. तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो. तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे. तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ, अपने सीन सुनाया करते थे. तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है. तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा, इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं. तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में. तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो. तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे.
0: अच्छा वही था जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को.

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो?
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फ़र्क पड़ता आपको को गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मज़ा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुलीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फ़ायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाज़ा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाज़ें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वाज वेरी कॉमिकल, इट वाज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूँ भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग ख़त्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6'4" के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज़ हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज़ नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मज़े की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज़ हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
0: वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
1: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए क्या है ये काम?
1: ये NGO है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

गीता संदेश कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर रेणु वत्स की। युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी लेकर हम आएंगे शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:00। और साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात जिसमें आपकी भेजी हुई ईमेल्स का जवाब दिया जाएगा शाम 7:30 पर होगा ये कार्यक्रम, तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम से शाम 7:30 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00 और अभी 5:05 पर होगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप इस प्रकार से सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब सुनिए कुछ गुमशुदा संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि राजवीर सिंह जो कि नवंबर 2025 को बगैर बताए घर से कहीं चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गोरा, कद 5'2", गोल चेहरा, पैंट कमीज पहने हैं, पैरों में जूते पहने हैं। और अगर इनके संबंध में आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप पुलिस कंट्रोल रूम कुरुक्षेत्र 01744-2221 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अन्य संपर्क सूत्र हैं 7056700115, 7056700815 और थाना लाडवा का संपर्क सूत्र है 8295392722। अब एक अन्य गुमशुदा सूचना। सूचित किया जाता है कि आशीष कुमार जिनकी उम्र 34 साल है जो कि 20 अप्रैल 2026 को अपने घर से बगैर बताए कहीं चले गए थे और जिनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ, कद लगभग 5'10", उम्र करीब 34 साल और इन्होंने जिस वक्त लापता हुए हैं उस वक्त पैंट व शर्ट पहन रखी थी। और इनके संबंध में अगर कोई सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप थाना लाडवा से संपर्क कर सकते हैं। अब एक और गुमशुदा संबंधी सूचना। दीक्षा पत्नी प्रदीप कुमार उर्फ प्रिंस, पुत्र ऋषि पाल कौशिक जिनका कि सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र में निवास स्थान है, जिनकी उम्र 31 वर्ष है, वो बगैर बताए कहीं चली गई हैं 12 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से, जिनकी तलाश जारी है लेकिन कहीं कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गोरा, गोल चेहरा, काले लंबे घुंघराले बाल, लंबाई है 5'2", सलवार कमीज पहना हुआ है, लाल रंग की चप्पल पाँव में है और जिनकी उम्र 31 वर्ष है। इनका फ़ोन नंबर आप जो अगर इनके संबंध में कोई सूचना आपके पास है तो आप इन नंबर्स पर सूचित कर सकते हैं। थाना
शहर थानेसर कुरुक्षेत्र का नंबर है 7056700111। एक अन्य संपर्क सूत्र है 7056708111 और 9466453993। सूचना समाप्त हुई। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म है मुनीम जी।

और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म बदलापुर से आतिफ असलम की आवाज में। गीत को लिखा है दिनेश विजयन और प्रिया सारियान ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

और आइए अब सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म प्यार का सागर से, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। संगीत है रवि का, गीतकार प्रेम धवन।

और आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं लकी अली की आवाज में। गीतकार हैं विजय अकेला, संगीतकार राजेश रोशन और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

और अब सुनिए एक गुमशुदा संबंधी सूचना। मनोज कुमार पुत्र दुलारे राम निवासी गांव पूरा निस्पंसारी थाना माखी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश, जो कि किराए पर रहते हैं अभी देवीदासपुरा जिला कुरुक्षेत्र में। इनका ये कहना है कि लड़की इनों की अंजलि, जिसकी उम्र 16 साल, पुत्री मनोज कुमार निवासी गांव पूरा निस्पंसारी थाना माखी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 29 मई 2026 को बगैर बताए घर से कहीं चली गई। जिसने हुलिया इस प्रकार है, जिसने रंग सांवला हरे रंग का सूट व लाल रंग का शरारा पहने हुए है। कद है 3 फुट 9 इंच। अगर इनके संबंध में कोई सूचना मिलती है तो आप पुलिस चौकी सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर को। फिल्म है जहां आरा, गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

और दोस्तों इसी प्रस्तुति के साथ इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस विषय पर। इसके साथ ही चर्चा का एक और विषय रहेगा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी की पुण्यतिथि। इसके साथ ही चर्चा का एक और विषय रहेगा देश बंधु चित्तरंजन दास जी की पुण्यतिथि पर, और कुछ रोजगार समाचार से भी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के कार्यक्रम शुरू के चलते हैं इस गीत के साथ। उसके बाद चर्चा करेंगे इन विषयों पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आइए दोस्तों चर्चा करते हैं आज के विषय यानी परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों ये दिन आज के दिन यानी 16 मई को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी और 1994 से इसे विश्व भर में मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के महत्व को समझाना तथा परिवार से जुड़े सामाजिक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है जहां वह प्रेम सम्मान सहयोग अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करता है। दोस्तों परिवार ही बच्चों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास की नींव रखता है। एक सशक्त परिवार स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों वर्तमान समय में तेजी से बदलती जीवन शैली बढ़ता शहरीकरण व्यस्त दिनचर्या और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के कारण पारिवारिक संबंधों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने संवाद बढ़ाने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों आज का दिन हमें यह संदेश देता है कि परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि प्रेम विश्वास और सहयोग का आधार है। यदि परिवार मजबूत होंगे तो समाज में शांति एकता और समृद्धि का विकास होगा। तो दोस्तों ये थी चर्चा परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। आइए आप सभी को सुनाना चलते हैं युवाणी कार्यक्रम में ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए दोस्तों चर्चा करते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी की पुण्यतिथि पर। दोस्तों आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान वैज्ञानिक शिक्षाविद उद्योगपति और राष्ट्रभक्त थे। आज के ही दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हें भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश का गौरव बढ़ाया। इनके जन्म के बारे में बात करें तो 2 अगस्त

1861 को तत्कालीन बंगाल के राउली कटिपारा गांव, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अध्ययन किया। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक बने और अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा दी। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ स्वदेशी उद्योगों के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जो भारत की पहली स्वदेशी रासायनिक और औषधि निर्माण कंपनियों में से एक थी। उनका मानना था कि विज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। दोस्तों, आचार्य राय एक महान लेखक भी थे। उन्होंने रसायन विज्ञान के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया। सादगी, परिश्रम और देशभक्ति के वे प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा, अनुसंधान और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी चर्चा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी की पुण्यतिथि पर। आइए आप सभी को सुनाए चलते हैं युवाणी कार्यक्रम में अगला गीत।

आइए दोस्तों चर्चा करते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास जी की पुण्यतिथि पर। दोस्तों ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता थे। आज के ही दिन इनकी पुण्यतिथि थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें प्रेम पूर्वक देशबंधु अर्थात देश का मित्र कहा गया। दोस्तों जन्म के बारे में बात करें तो 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। वे एक सफल प्रतिष्ठित वकील थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सुख सुविधापूर्ण जीवन त्याग दिया। उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमों की पैरवी की और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित किया। वर्ष 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। चित्तरंजन दास केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। वे शिक्षा, समाज, समानता और राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे। उन्होंने अपना धन और समय देश हित के कार्यों में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों ये थी चर्चा देशबंधु चित्तरंजन दास जी की पुण्यतिथि पर। आइए आप सभी को सुनाए चलते हैं युवाणी कार्यक्रम में अगला गीत।

आइए दोस्तों आप सभी को अवगत कराए चलते हैं कुछ रोजगार समाचार से। NTA काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 है। इसके साथ ही UPSC में फायरमैन गार्ड्स के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। पदों की संख्या की बात करें तो कुल पद 170 हैं। वे आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून 2026 है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगी गई है। अगली रोजगार सूचना दोस्तों, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कुल 34 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है। इसके साथ ही लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली में नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है। वह पदों की संख्या की बात करें तो कुल पद 24 हैं। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 32 वर्ष मांगी गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ रोजगार व प्रवेश संबंधी सूचना। आइए आप सभी को सुनाए चलते हैं युवाणी कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Avignon for the latest updates. Ankit, what significance does this G7 summit hold for India?
2: Yes, Saira, it's really, really significant. The Prime Minister will attend a key G7 working session in some time. The focus of this session is on the forging new partnerships and rebuilding international solidarity. The Prime Minister will be sitting down with G7 leaders, partner nations and top officials from the World Bank and the African Development Bank. See, India's regular presence at this summit is highly significant. India has truly emerged as a major global power. Today, the entire world is looking toward New Delhi for real solution to complex crises. Sir, if you see, India is now actively setting the global agenda to resolve these problems. This massive shift is a direct result of Prime Minister's strong diplomacy and his excellent personal rapport with world leaders. Saira.
1: Well, thank you so much, Ankit, for that update. Moving on the sidelines of the summit, Prime Minister Modi is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer and President of the UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. A key engagement during the visit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across sectors. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. U.S. allies at the Group of Seven summit of major industrialized nations worked today to push the war in Ukraine back up the agenda of President Donald Trump after more than 4 years of the conflict. Host President Emmanuel Macron of France said he'll seek to persuade Mr. Trump to continue supporting Ukraine and increase pressure on Russia to help reach a peace agreement. As the U.S. under Mr. Trump has cut back aid to Ukraine, France and its European allies are now the biggest providers of military and financial support to Kyiv. Ukrainian President Volodymyr Zelensky also joined G7 leaders for a morning working session, but talks wrapped quickly as leaders gathered for just 75 minutes. Back home, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. He gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Ahead of the re-examination of National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026, which is scheduled for 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency or NTA has welcomed the decision. In a statement, the NTA said that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. Extending the rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. Sensex jumped 544 points to close at 76,808, while Nifty rose 135 points to settle at 23,989. And in women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan in their second Pool A match. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने नीट में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगाई और केंद्र सरकार ने गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
1: आज कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो NCR का एरिया है उस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बैठक में NCR के जो रीजन प्लान है 2041 उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
0: उन्होंने बताया कि बैठक में NCR के भविष्य के विकास, शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, संरचना और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में रैपिड

0: उसके लिए परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है कि उसके अंदर हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाए।
1: हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को राज्य भर में योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉ. मिश्रा ने इस बार के योग दिवस समारोह को एक जन आंदोलन बनाने और स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक के बाद डॉ. मिश्रा ने बताया कि 18 मई से पूरे हरियाणा में योग गतिविधियां चल रही हैं और इनमें अब तक 20,36,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में आयोजित विभागीय योग कार्यक्रमों में भी 13 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12:00 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉ. जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉ. रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि योग मनुष्य को स्वस्थ ही नहीं तनाव मुक्त भी रखता है।
2: आज हर व्यक्ति, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो दायित्ववान व्यक्ति है, उसके ऊपर काम का बोझ बहुत होता है और अन्य कई प्रकार के तनाव भी होते हैं और खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कभी कभी वो बीच में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही वो एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने काम पर आते हैं।
1: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर ने आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य मंत्री ने खुद योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। आयुष मंत्रालय की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग घोषित की गई है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। योग तन ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है।
3: आज 192 कंट्रीज में योग दिवस मनाया जाता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत गौरव की बात है। आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। हमारा रहन-सहन, हमारा खान पीन और जिस तरह से ये दुनिया चेंज हो रही है, सबको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है और बीपी शुगर तो हर तीसरे आदमी को है, तो उसका एकमात्र इलाज है योग। इससे आप फिट रहते हो, मेंटली भी, फिजिकली भी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है बल्कि मन को शांत, विचारों को और जीवन को अनुशासित बनाने का माध्यम है।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए रोहतक जिले में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 21 जून को यह परीक्षा दोपहर बाद 2 से 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आज नीट के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। यह वाहन बिना रुके संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर एवं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री

0: दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामक निगरानी की और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आज हिसार में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्षों में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीति को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है।
1: सरकार ने 12 साल में देश के गौरव को बढ़ाया। देश के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, खोई हुई जो आन बान और शान है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको रीगेन करना, और विकास के काम। दोनों से ही पता लगता है कि सरकार किस लेवल पर कैसा काम कर रही है। पिछले 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, विकास की बात करें, भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी माँ बहन हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, बैकवर्ड सेल्फ के लोग हों, सब को बढ़ाने की बात, उनका सम्मान बढ़ाने की बात की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 16 और 17 की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉ रेणु वत्स की।
3: श्रोताओं नमस्कार, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 16 से आगे की व्याख्या। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ही न खाने वाले का, तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल ही न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता है। कारण अन्न अधिक खाने से, भूख के बिना भी खाने से या भूख से अधिक खाने से प्यास अधिक लगती है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल हो जाता है, शरीर में आलस्य छा जाता है। बार बार पेट पर ही ध्यान जाएगा, कुछ भी काम करने, भजन, जप, ध्यान आदि करने का मन नहीं करता है। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न ही सुखपूर्वक लेटा ही जाता है। न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? न चैकान्त मनश्नतः, ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता है। कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन आने लगता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि सूख जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन ही हो जाता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना दुभर हो जाता है, चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं है। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? अर्थात नहीं हो पाएगा। न चाहती स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होगा उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। कारण क्या है कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है, बैठे रहने से भी परिश्रम लगने लग जाता है, ज्यादा लेटे रहने से नींद भी नहीं आती है। गाढ़ी नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, अतः वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता है। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। जाग्रतो नैव चार्जुन, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती है तो फिर बिल्कुल ही न सोने से तो योग की सिद्धि कैसे संभव है? तामसिक वृत्ति वाले और सात्विक वृत्ति वालों जागने में बहुत फर्क है। राजसी और तामसी वृत्ति वाले जो जगते रहते हैं उनको और समय में भी निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम में, जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भी भोजन करना भूल जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, तो वे अनश्नतः अर्थात योग सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट साध्य की प्राप्ति में स्वयं को असमर्थ पाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा भी नहीं कि साधक में इच्छा या प्रयत्न का अभाव हो, फिर भी लक्ष्य प्राप्त करना उसे कठिन सा प्रतीत होने लगता है। वह क्या है जो अनजाने में ही साधक को अपने साध्य से दूर ले जाता है? कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत प्रयोग में सफलता के लिए सावधानियों को बताए बिना पूर्ण नहीं होता। ध्यान योग के मार्ग में आने वाले संभावित गर्तों का जैसे संकेत मात्र अगले श्लोकों में देंगे, जिनसे साधक को बचने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे योग की सिद्धि होती है, योग की सिद्धि में सहायक होंगे। ध्यान की सफलता के लिए महत्व का नियम क्या है? अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अति किसी भी चीज की ना हो, ना तो अधिक खाना चाहिए, न बिल्कुल ही खाना छोड़ देना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, न बिल्कुल ही सोना छोड़ देना चाहिए, अर्थात अति सर्वत्र वर्जयेत, अति को छोड़ ही दें, अर्थात जीवन के कार्यों और उपभोगों में अतिरेक का त्याग कर देना चाहिए। परिमितता या संयम सफलता की कुंजी है। असंयम से विक्षेप उत्पन्न होते हैं और संगठित व्यक्तित्व का सामंजस्य भंग हो जाता है। इसलिए आहार, विहार और निद्रा में परिमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में भोजन करने वाले या अति उपवास करने वाले व्यक्ति के लिए योग असाध्य है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो लोग भोजन और मनोरंजन में संयमी, काम में आराम और नींद में नियमित हैं, वे योग का अभ्यास करके सभी दुखों को कम कर सकते हैं। अर्थात योग आत्मा का ईश्वर से मिलन है। योग का विपरीत है भोग, जिसका अर्थ है सुखों में संलग्न होना। भोग में शरीर के प्राकृतिक संतुलन का उल्लंघन होता है और परिणाम में रोग प्राप्ति होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में भी कह दिया है। यदि शरीर रोग ग्रस्त हो जाता है तो इससे योगाभ्यास में बाधा आती है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि फिजियोलॉजी में संयम और योग का अभ्यास करके हम शरीर और मन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध जब उन्होंने गंभीर तपस्या और भोग के बीच में मध्य मार्ग के समय में, एक कहानी है, कहा जाता है कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने एक बार खाना पीना छोड़ दिया था और ध्यान में बैठ गए थे। हालांकि इस तरह से अभ्यास करने के कुछ दिनों के बाद पोषण की कमी से वे निराश हो गए थे और ध्यान में अपने मन को स्थिर करने के लिए उनका प्रभाव समाप्त हो गया था। उसी समय गांव की कुछ महिलाएं वहां से गुजर रही थी। वे अपने सिर पर नदी के पास से पानी के घड़े लेकर जा रही थी तो गीत गा रही थी। गीत के बोल थे, तान पुरे के तार कासो। ये एक तार युक्त भारतीय संगीत वाद्य है, लेकिन उन्हें इतना मत कासो कि तार टूट जाता है। उनकी बातें गौतम बुद्ध के उपनाम में छपी और उन्होंने कहा कि ये अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं ज्ञान की ऐसी बातें गा रही हैं, उनके लिए हम इंसानों के लिए एक संदेश है ये। हमें भी अपने शरीर को नष्ट करना नहीं चाहिए, तपस्या का अभ्यास करना चाहिए।

0: लेकिन वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शरीर नष्ट हो जाए। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 16 और 17 की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज अपने श्रवण किया श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 16 और 17 की क्रमशः व्याख्या। प्रस्तुति थी डॉक्टर रेणु वत्स की। और हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज मंगलवार है और शाम 7:30 पर आपकी भेजी हुई प्रतिक्रियाओं का, यानी जो आप ईमेल के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं सप्ताह भर के कार्यक्रमों की देते हैं, उन सब का जिक्र होगा, उन सबको पढ़ा जाएगा, उन सब के जवाब दिए जाएंगे। तो सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आपकी बात आज शाम 7:30 पर। और आपकी पसंद के फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें में रात्रि 10 से लेकर 11 तक। तो इसमें भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, तो जिसके लिए नंबर होगा 9466021336। तो आप अपनी पसंद का गीत भेज सकते हैं अपनी फरमाइश के साथ, अपने नामों के साथ। तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम से रात्रि 10 से और FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। और अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें, हमारा फोन नंबर रहेगा 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और हमारा आज का विषय है धान की रोपाई में सावधानियां, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदीप रावल जी, जिला विस्तार विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र यमुनानगर से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुना कार्यक्रम फोन इन।
6: कार्यक्रम के सभी

0: स्वर्ण गिरधारी की राम राम साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन और फोन इन में हम लाए आपके बीच में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उस तरह संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई सवाल हो, उसका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। तो जिस संपर्क सूत्र से आप बातचीत करेंगे वो रहेगा 0744-221-322, यानी जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल पे फ़ोन करेंगे उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत ज़रूरी है। और जब बात फोन इन की है तो आज के फोन इन का विषय रहेगा धान की रुपाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर संदीप रावल, जो जिला विस्तार विशेषज्ञ है सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र यमुनानगर में। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी लाल जी, और आपके कार्यक्रम को सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को भी मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हालांकि हम फसल विविधीकरण की तरफ मुड़े हैं, लेकिन फिर भी धान और गेहूं हमारी मुख्य फसलें फिर भी हैं, मुख्य फसलों में हम मान के चलेंगे। तो ऐसे अब धान का मौसम है, लोगों ने, किसान साथियों ने जो है पौध की रोपाई भी करी है, अच्छी भी हो गई है, तैयार भी है, और एक नई उम्मीद लिए बैठे हैं कि उस स्वस्थ पौध से वो बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से स्वस्थ खेती ले सके, यानी वैज्ञानिक तरीके से अपनी फसल ले सके, ताकि उनको बहुत अच्छा लाभ हो सके। तो ऐसे में आज चर्चा करेंगे कि हम जो धान की रोपाई अब करने वाले हैं उसमें मुख्य कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया जी, आपने जैसा बताया कि धान हमारी खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसलों में आती है, और विविधीकरण की बात करी हो भी आपने, एक मौसम की भी बात करी है, तो ये बातचीत आज की बड़ी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक इस बारे में भी किसान भाइयों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे मौसम आधारित खेती होती है हमारी
0: जी,
1: तो इस साल जो परिस्थिति बन रही है, जैसे किसान भाइयों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, अलनीनो के नाम से एक मौसम की परिस्थिति होती है जिसमें आशंका रहती है कि बरसात कम हो
0: जी,
1: तो इस साल जो है वो परिस्थिति बन रही है। हालांकि वो हमारे, अगर भारत की बात करें तो एक आईओडी होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल
0: जी,
1: तो उस पर भी निर्भर करती है, लेकिन उम्मीद ऐसी है जो भारतीय कृषि मौसम अनुभाग ने भी बताई है कि इस बार बरसात जो है लगभग 90% जो एवरेज है उसका 90% के आसपास रहेगी। तो किसान भाइयों का एक तो मैं वो भी सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे वैकल्पिक जो फसलें हैं उन पे भी जा सकते हैं क्योंकि अभी समय है, और दूसरा जैसे धान की सीधी बिजाई है जिसमें पानी जो है लगभग एक हफ्ते के अंतराल पे लगा सकते हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। जहाँ तक बात की आपने पौध की, क्योंकि देखिए जैसे हम कहते हैं कि किसी इमारत की जो नींव अगर मजबूत है तो वो इमारत भी मजबूत रहती
0: जी।
1: तो हम जब धान की फसल की बात करते हैं, उसके उत्पादन की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है उसमें ये धान के जो रोपाई है उस समय की।
0: बिल्कुल,
1: अगर इस समय जो किसान भाई हैं ये सावधानी बरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी 50-60% जो दिक्कतें हैं वो यहीं पे ही
0: शुरू में
1: खत्म हो जाती है। तो उसमें सबसे पहली बात जो किसान भाइयों को, जैसे हम कहते हैं 15 जून के बाद किसान भाई अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं, आज 16 तारीख है तो समय उपयुक्त है, इस समय के हिसाब से वो लगा सकते हैं। ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो उसकी पौध की आयु है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती
0: जी।
1: ये निर्भर करती है किस किस्म का चुनाव करा है किसान ने उसके ऊपर भी
0: जी।
1: क्योंकि जैसे हम कहें जो कम अवधि वाली किस्में हैं तो उसमें लगभग 20-25 दिन की पौध जो है वो सबसे उपयुक्त रहती है, जो मध्यम अवधि की हैं या जो लंबे समय की हमारी किस्में हैं वो 25-30 दिन की जो आयु रहती है उसकी
0: जी।
1: वो सबसे उपयुक्त रहती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर जैसे हम कच्ची पौध जैसे लगाते हैं, जैसे 20-25 दिन की मैंने बताई, तो इसमें एक तो जड़ें जल्दी पकड़ती है
0: जी,
1: जितनी जल्दी जड़ें पकड़ेगी उतनी जल्दी उसमें कल्ले फूटेंगे, बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो एक तो सबसे पहली बात तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखनी है कि अभी समय है, अगर जो किसान लगा रहे हैं तो एक तो अपनी लेबर का प्रबंध कर लें, क्योंकि इस साल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेबर कम है, तो एक तो लेबर का प्रबंध कर लें ताकि समय से उनकी रोपाई जो है खेत के अंदर हो सके। फिर बात आती है कि जो सावधानियां हमें बरतनी है, जैसे 2-3 सावधानी है। एक तो
0: पहले तो ये कि आपने कहा 15 जून से शुरू हो गई, ये कब तक चलेगी?
1: ये 15 जून से, ये भी किस्मों पे रहती है जो हमारी कम अवधि वाली है, क्योंकि वो कम अवधि मतलब कम समय में पक्के तैयार हो जाती हैं,
0: जो 20 से 25 दिन में की पौध की बात करते हो वो कम अवधि वाली है और उनका पकने का समय भी कम होगा।
1: हाँ, जैसे जो कम अवधि हम बोलते हैं 120 से 125 दिन के अंदर जो पक्के तैयार हो जाती है बीज से बीज में, वो हम कम अवधि में लेते हैं, 120

0: 35 से 140 दिन की मध्य में
1: नक्षत्र पूर्ण है। जी
0: तो जो कम अवधि की हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो भी अब से लेके और जुलाई के कई बार जैसे लेबर नहीं मिलती है, जैसे बासमती के थोड़ा लेट लगाते हैं किसान, तो उसको जुलाई के आखिरी हफ्ते तक लगाया जा सकता है।
1: जी
0: जो हमारी मध्यम किस्में या जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो कोशिश करें किसान भाई इस महीने में लगा लें, या जो जुलाई का पहला हफ्ता है तब तक उसकी रोपाई पूरी कर लें।
1: जी
0: एक ये ध्यान रखे किसान भाई कि जब पौध उखाड़नी है उससे एक दिन पहले उसमें पानी खड़ा कर दें।
1: अच्छा।
0: ताकि मिट्टी नरम हो जाए, ताकि पौध जो है जब वो उखाड़े तो उसमें जड़ों का नुकसान कम से कम।
1: डॉक्टर साहब यहाँ एक छोटा सवाल किसानों की तरफ से है
0: जी।
1: पानी खड़ा कर दे या पानी दे दे अच्छी तरह से, ये थोड़ी सी भ्रम रहता है।
0: हाँ देखिए, एक तो जैसे अभी पौध में हम ये कहते ही हैं कि जो पानी देना है वो इस तरीके से दें कि शाम के टाइम पानी दें
1: जी
0: और दिन में उतार दें जब गर्मी होती है। इसके लिए जो आपने पौध उखाड़नी है उसको एक दिन पहले पौध में पानी देने का मतलब ये है कि वो पानी खड़ा रहे उसमें एक दिन के लिए, ताकि वो थोड़ा सा उसमें गारा सा बन जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए मिट्टी
1: जी,
0: ताकि जब वो पौध उखाड़े तो जड़ों को नुकसान कम से कम।
1: पहले एक फोन ले लें
0: जी।
1: हेलो हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नाम बलदेव जी, कैसे हैं आप? कितने की तैयारी है, कौन कौन से लाने आपने? क्या किले लाओगे?
2: दो
1: किले। कौन सी किस्म लाओगे?
2: दो
1: बासमती के और दो इसके पी आर के
2: किले।
1: अच्छा, तो जो या ई बुलाओगे इसी किस्म कौन सी छांटी है?
2: ये 1509।
1: ठीक है, आप बताओ क्या पूछना?
2: बस ये पूछ रहे तो मेरी जो प्यौदा ने वो लाल सी हो रही
1: है। डॉक्टर
0: जी, बलदेव जी, जो आप कह रहे हैं लाल सी हो रही है, देखिए दो तीन कारणों की वजह से हो सकती है। एक तो जैसे पीछे तापमान अधिक रहा है, हमारी जो पौध है वनस्पतिक वृद्धि के समय हम बोलते हैं लगभग 26 से 37 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, पीछे अगर आप तापमान देखें तो 44-45 डिग्री तक पहुंच गया था। दूसरा एक समस्या ये रहती है, जैसे मैंने अभी पानी की बात कर रहा था, कई बार दोपहर में पानी खड़ा रहता है, उबाल खा जाता है, तो उस वजह से भी हो जाती है। और तीसरी ये है कि जैसे रोसड़े से खेत में कई बार हम जो पौध लगा देते हैं तो उसमें भी आ जाती है, लाल सी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें जिंक की कमी का लक्षण हो सकते हैं।
2: यही पूछ रहे हैं,
0: अब कितने दिन की पौध होगी है, कब आपने
2: रोपाई? 16-17 दिन की है जी।
0: 16-17 दिन की है, तो जैसे हम कहते हैं 25 दिन और रुक जाए, तो 20 दिन की जब आपकी पौध हो जाती है, क्योंकि पौध छोटी होती है, तो उसमें एक तो है कि आप पहले खाद डाला करें, उसमें नहीं भी डाला है तो आप जिंक यूरिया का स्प्रे उसमें किया जा सकता है, उसमें 2.5% यूरिया और लगभग 0.5% यूरिया जो है 21% वाला, या 0.3% के हिसाब से जो आपका 33% वाला यूरिया है उसका, जैसे एक टंकी की बात करूं तो लगभग 300-350 यूरिया ले सकते हैं जी आप, और लगभग 60 ग्राम आप जिंक सल्फेट लेके उसका स्प्रे उसमें कर देंगे तो वो आपकी, और एक रिपीट और कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, और तो आप देखेंगे उसमें जो लालिमा सी जो आप कह रहे हैं जो जंग से उसमें दिखाई दे रहे हैं तो वो दूर हो जाएगी उसमें।
1: बलदेव जी और कुछ पूछना है?
2: बस जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
2: मौसम सही चल रहा है?
1: मौसम बढ़िया है, फसल बढ़िया होगी आगे। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि एक दिन पहले हमने पानी देना है
0: जी,
1: और इतना पानी रहे कि जो हमारा पाम है वो धस जाए।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी,
0: ताकि मतलब उसमें नरम हो जाए मिट्टी, और उखाड़ते टाइम भी ये ध्यान रखे कि हालांकि लेबर पे निर्भरता है तो सूखे में पाड़ देते हैं कई बार, हमने देखे किसान भाई, उससे जड़ों का नुकसान काफी होता है,
1: क्योंकि जो नुकसान है तो मालिक का है ना, लेबर का नुकसान तो है नहीं वो
0: बिल्कुल, तो उसको सावधानी से नीचे से पकड़ के उखाड़ते हैं तो हमने देखा है कि उसमें जड़ों का नुकसान कम होता है। दूसरा एक और ये देखा, जैसे खरपतवार हैं, वैसे तो किसान हमारे बड़े मेहनती हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार जैसे डांड है ये या सोंका है, जीरी की तरह ही दिखता है पौधा, तो कई बार जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें साथ में कबाड़ का जो पौधा है उसको भी साथ में लगा देते हैं।

0: तो ये विशेषकर किसान भाई उसका भी ध्यान रखे, जब पौध लगवा ये रोपाई करवा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा छटाई कर लें कि ऐसे अगर पौधे हैं तो उनको निकाल दें, या जिसकी जड़ें अगर टूट गई हैं तो उन पौधों को खेत के अंदर ना लगाएं, और अगर लग भी जाते हैं फिर थोड़ा ये रखे कि जो उसमें गैप फिलिंग करवा दे, जैसे पौधा अगर लग गया है बाई चांस
1: जी
0: तो उसमें से निकलवा के, चाहे या जड़ों की मान लो नहीं पकड़ पाई है, वो पौधा सूख गया है वहाँ पे, तो उसी किस्म को जो थोड़ा सा उसमें से रख लें पौध, तो उसकी गैप फिलिंग जरूर करवाएं ताकि खेत पूरा भर जाए, और कोशिश करें कि अगर लाइनों में भी रोपाई करवा सकें। हालांकि क्योंकि लेबर की जैसे मैंने बताया कि दिक्कत है तो मुश्किल हो जाता है, लेबर अपने हिसाब से लगाती है, लेकिन अगर लगा पाएँ, संभव हो पाए तो 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पे और 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पे लगाएं, और कोशिश करें कि एक जगह पे 2 से 3 पौध साथ में लगाएं। तो जैसे मैंने बताया कि मान लो अगर एक आधी पौध नहीं भी चल पाती है किसी
1: जी
0: कारणवश तो वो खेत खाली ना रहे।
1: जी यानी एक आधा पौधा मर भी गया
0: हाँ हाँ
1: तो बाकी हैं
0: तो
1: उसको।
0: खेत हाँ खाली ना रहे, पूरा खेत भर दे। और जो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है
1: जी
0: वो ये है, जैसे हम कद्दू करते हैं तो कद्दू का जैसे खेत तैयार कर ले अपना, वो जुताई कर ले अच्छे से, लेज़र लेवलिंग करवा ले ताकि पानी समतल तरीके से लगे, पूरा दक्षता उसकी महत्व सही तरीके से हो, और पानी सही लगता है तो फिर उसमें जो खाद डलता है उसकी उपयोग क्षमता भी बढ़ती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, पानी जब हम कद्दू करते हैं तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय थोड़ा सा हम कहते हैं जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर का पानी लगा के उसके बाद अच्छे से तैयार करें, और पौध लगाने में और कद्दू करने में समय हो। कई बार
1: कितना
0: जैसे हमने देखा है, एक तरफ कद्दू चल रहा है और दूसरी तरफ वो पौध भी लगाना शुरू कर
1: काम चल
0: देता
1: रहा
0: है,
1: है
0: उससे
1: उसका।
0: दिक्कत ये आती है कि एक तो पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, अंदाज़ा नहीं रहता, गहरी लग जाती है, दूसरा जब वो गाथड़ बैठता है थोड़ी सी और वो दब जाती है। तो अगर मैं बात करूँ अभी अगले 15-20 दिन के अंदर जो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि जी फूट नहीं हो रही है पौध में, जो हमने लगा जीरी लगाई है,
1: कारण उसका वो
0: कारण
1: है।
0: सिर्फ एक सिंपल सा है कि वो, क्योंकि जड़े आप उसकी उखाड़ के देखेंगे तो दो जड़े दिखाई देंगे आपको, एक तो जड़े जो पौध की पहले थी और एक जड़े क्योंकि वो गहरी लगी हुई है उसके ऊपर से दोबारा जड़े फूटती है,
1: जी
0: तो वो जो समय है एनर्जी है वो पौधा जड़े फूटने में लगाता है, तो वो फूट थोड़ा लेट शुरू होती है। इतना संयम किसान भाई रखते नहीं है और उसके चक्कर में एवज में कई बार हजारों की दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं फूट के
1: कहने
0: चक्कर
1: का
0: में।
1: मतलब है जो एनर्जी पौधे की लगनी थी बढ़ने में
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: अपने को संभालने में
0: वो
1: लगी शायद,
0: संभालने में
1: क्यों
0: लगती है।
1: नीचे नीचे संभाल रहा अपना को,
0: जी
1: जो संभलेगा तो फूट हो
0: जी
1: जाएगा।
0: हाँ, मतलब ये हो कि वो गाद बैठने के बाद 1 इंच से गहरी जो है हमारी पौध की जड़ें जो हैं वो ना जाए, इस चीज़ का विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें। और जब रोपाई करवा रहे हो तो उस समय थोड़ा सा पानी उतार दे, 2 से 3 सेंटीमीटर ही खड़ा हो, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा रहे कि हम कितनी गहराई तक जो लेबर लगा रही है तो उसको भी अंदाज़ा रहे कि भाई कितनी गहराई तक हमारी लग रही है, तो ज़्यादा गहरी ना लगे। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आम तौर पे हमने देखा है कि नहीं अपनाई जाती है, और जिसकी वजह से फिर उसमें फूट भी लेट शुरू
1: फूट
0: होती
1: लेट
0: है,
1: है या
0: पैदावार
1: कमी
0: में कमी रहती
1: आती
0: है,
1: है,
0: तो
1: पूते पूरे नहीं हो पाते।
0: हाँ
1: जी
0: बिल्कुल, ये तो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि इस चीज़ पे ध्यान रखें।
1: डॉक्टर साहब, ये सब तो ख्याल रखा जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम बेहतर तरीके से खेत की तैयारी ना करें और फसल बढ़िया हो जाए?
0: देखिए, हम तो वैसे तो अब ये भी है, विज्ञान ये भी कहता है, शोध ये भी कहता है कि आप तप्पड़ में भी बिजाई संभव है, जो
1: जी
0: मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग की हम
1: जी
0: बात करते हैं, लेकिन जो आम अगर हम बात करें जो किसान अपना रहा है वो ये है कि कद्दू करके ही वो करता है, तो कोशिश ये करें कि अच्छे से उससे, एक तो क्या होता है जब कद्दू करते हैं तो उससे हमारा पानी ठहरता है तो पानी कम लगता है हमारा, और दूसरा क्या है कि उसमें जो हमारा जो पोषक तत्व हैं उसकी उपयोग दक्षता भी बढ़ती है, तो ये चीज़ें हैं कि वो खेत का समय यही है हमारे पास जो खेत की तैयारी अच्छे से कर सकता है किसान, तो वो अच्छे से कद्दू करके उसके बाद लगाए। अन्यथा दूसरे ऑप्शन हैं जैसे वो धान की सीधी बिजाई का मैंने शुरू में ही
1: जी
0: बताया है, अगर पानी की कमी है लेबर की कमी है तो उस केस में, और जैसे अभी बलदेव जी बता रहे थे 1500 नो लगाते हैं, उन्होंने ये नहीं पूछे कि जैसे ज़्यादातर दिक्कत 1500 नो में आती है झंडे की शिकायत रहती है, तो उसमें भी ये है कि पौध उखाड़ने से 1 हफ्ता पहले उसमें एक तो बेवेस्टीन का जो कार्बेंडाजिम है उसका 1 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है, यानी 1 कनाल की बात करें तो आधा किलो बेवेस्टीन उसमें स्प्रे कर देते हैं, और या फिर DSR है, धान की सीधी
1: जी
0: बिजाई है क्योंकि उसमें जड़ें नहीं टूटती हैं तो उसमें समस्या कम आती
1: DSR
0: है।
1: में अभी थोड़े से किसान कुछ तो आगे हैं, कुछ
0: जी
1: अभी कन्फ्यूजन में है, भ्रम में है कि कुछ कहते हैं कि इसका उत्पादन सही नहीं है। हालांकि इस मंच से बार बार प्रयास किया गया कि उनके भ्रम को दूर किया जाए।
0: मैं अगर अपने ज़िले की बात करूं, मैं यमुनानगर में कार्यरत हूं, तो अभी हमारे ज़िले के अंदर मैं इस साल की अगर बात करूं तो लगभग 5 से 6 मशीनें जो हैं DSR की, जो स्टेप सीडर की बात करते हैं, वो खरीदी गई। तो ये कहीं ना कहीं किसान के रुझान को DSR की तरफ दर्शाती है। आज भी हमारा एक प्रोग्राम था तो वहाँ उस गांव में भी लगभग 30-32 किले जो हैं DSR के लगाए गए हैं। तो धीरे धीरे किसानों का रुझान बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। और जहाँ तक प्रबंधन की बात करें तो आज चाहे खरपतवार प्रबंधन की बात करें या हमारा उत्पादन की बात करें, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। और लगभग अगर किसान सतर्क है, जागरूक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बराबर ही उत्पादन वो ले सकता है। और खर्चे की बात करें तो चाहे लेबर काम 4,500 की लेबर का सीधी सीधी बचत है, ट्रैक्टर की टूट फूट है, पानी की बचत है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें अग्रसर है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम भी इसके बारे में जागरूकता पैदा
1: कर। थोड़ा सा DSR की ही पहले बात कर लें, DSR में मुख्य समस्या आती क्या जो किसान इतने भ्रम में होते हैं?
0: मुख्य समस्या देखिए यही है, क्योंकि जैसे मैंने इसमें बताया कि अगर आपका पानी खड़ा रहता है कद्दू वाली जीरी में तो खरपतवार कम जामते हैं। DSR में जो एक बदलती है चीज़ वो ये है कि उसमें पानी खड़ा नहीं होता है, तो उसकी वजह से कई बार किसान जो कहते हैं कि खरपतवार हमारे ज़्यादा हो जाते हैं,
1: ज़्यादा हो जाते
0: हैं। तो उसमें आज के समय में अगर हम बताएं तो खरपतवार नाशक दवाई बहुत है, जैसे पेंडीमेथलीन है, बिजाई के तुरंत बाद 1.25 लीटर से 1 लीटर 33 ml के आसपास वो किसान भाई अगर तुरंत स्प्रे कर देता है बिजाई के तुरंत बाद, तो उसमें काफ़ी हद तक उसका कंट्रोल हो जाता है। और आजकल तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट जो वैरायटी बोलते हैं वो भी आ गई हैं, जैसे हाइब्रिड्स में हैं, फुल पेज के नाम से आती है, या बासमती में कहें तो 1985 है जो 1509 है, या 1979 है जो 1121 का प्रारूप है, जिसमें जो हम न्यामड़ जीरी की या चौबे की समस्या जो कहा करते थे वो भी समस्या अब धीरे धीरे करके इस दवाई जैसे इमेजाथाइपर का प्रयोग कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो भी उससे अब दूर होगी।
1: सर जो खरपतवार की बात ही आ गई है तो थोड़ा सा ये भ्रम कि ज़्यादा होगा, दवाई तो उसमें इतना प्रयोग करनी करनी है
0: जी,
1: वो तो उसमें भी होगा
0: जी,
1: आप प्योज से लगाएंगे
0: हाँ जी,
1: तो इतना डरने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से।
0: हाँ, बस वो किसान के है जैसे पौध लगा के वो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि पानी भरा हुआ है, कुछ दिन तक नहीं आएगा। इसमें प्रबंधन साथ के साथ है, पहले 15-20 दिन
1: आराम की स्थिति नहीं है।
0: हाँ, पहले 15-20 दिन हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद जाके खेत को देख रहे हैं तो उस टाइम तक हो सकता है, क्योंकि एक अवस्था है 3 से 4 पत्ती की, उसी टाइम पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेट होते हैं तो फिर थोड़ा सा
1: लेकिन जिस तरह से जलस्तर घट रहा है तो DSR समय की मांग है।
0: बिल्कुल सर, जलस्तर के साथ साथ जो किसान की अगर मैं बात करूं तो जो लेबर की समस्या बहुत बढ़ रही है, मिल नहीं रही है, और अगर एक आधा किला है उसका तो फिर बड़ी दिक्कत है उसके लिए, तो कि लेबर का अरेंज करना और फिर वो फिर मुँह मांगे दाम
1: जी।
0: तो उसको देखते हुए मुझे लगता है आज के समय की मांग भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि पानी तो देखिए अगर हम बात करें तो हर साल घटता ही जा रहा है, तो उसके हिसाब से धान की सिद्धि भी जाइए बहुत
1: तो DSR से लेबर बचेगी,
0: बिल्कुल
1: आपकी जो है जल भी बचेगा, यानी
0: मौसम बदलाव में भी फर्क आता है। जैसे मीथेन गैस अगर पानी खड़ा होता है तो उसका उत्सर्जन होता है, जो आज हम देख पा रहे हैं कि कभी बरसात बेमौसमी बरसात का होना, जब बरसात चाहिए, और जैसे मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि इस समय बरसात कम होने की आशंका है इस साल, तो ये चीज़ें से भी थोड़ा बचाव हो सकता है अगर हम किसान भाई थोड़ा सा सचेत होके सही जो सस्टेनेबल टिकाऊ पद्धति है उसकी तरफ जाए।
1: तो सर, चाहे किसान साथी DSR का प्रयोग करें या फिर प्योज का प्रयोग करें, दोनों में ही खाद की आवश्यकता पड़ेगी, खुराक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना खुराक के तो ना व्यक्ति चल सकता है, ना फसल ना पशु। तो फसल को भी खुराक चाहिए, विधि कोई सी भी हो
0: जी।
1: तो हम कितनी खाद दोनों विधियों में प्रयोग करेंगे?
0: देखिए ये खाद तो बराबर ही होगा, चाहे DSR है चाहे वो ट्रांसप्लांटेड यानी कद्दू वाली जीरी है। हाँ, ये जरूर निर्भर करेगा कि कौन सी किस्म का चुनाव कर रहा है किसान भाई। जैसे बासमती है, बासमती में भी कम अवधि वाली है, या फिर मोटी जीरी है, संकर किस्म है। तो जैसे संकर किस्म की बात करें, बहुत सारे, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ हमारे यहाँ यमुनानगर में संकर किस्में ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि ये अच्छा उत्पादन देती हैं, तो इनकी आवश्यकता भी ज़्यादा है। तो 60-24-24 NPK की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर यूरिया, DAP और पोटाश के रूप में बताऊं मैं आपको, तो लगभग 130 किलो यूरिया प्रति एकड़, और अगर डीएपी से देते हैं तो एक कट्टा डीएपी का, अगर क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है मिलता नहीं है कुछ एसएसपी के, यानी 150 किलो जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग किया जा सकता है, और 40 किलो पोटाश।
1: जी
0: और इसके साथ साथ क्योंकि जीरी के अंदर जिंक की कमी भी आती है,
1: जी
0: तो उसमें अगर 21% वाला किसान डाल रहे हैं तो 10 किलो प्रति एकड़, और अगर 33% वाला है तो उसे लगभग 6.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर हमारी कम अवधि वाली है, जैसे HKR 49 है हमारे विश्वविद्यालय की नई वैरायटी है, PR 126 है, ये मोटे धान में आती है, कम अवधि के अंदर आती है, तो इसमें जो हमारी यूरिया की आवश्यकता है ये थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि कम समय में कम खाद लेती है, तो लगभग डीएपी पोटाश की मात्रा उतनी है। यूरिया की बात करें तो 130 की बजाय इसमें लगभग 105 किलो का हमें आवश्यकता रहती है। और बासमती की बात करें तो ये लगभग आधी हो जाती है, क्योंकि वो उनको यूरिया की भी आवश्यकता कम है। तो हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैंने 130 किलो यूरिया बताया है, अगर डीएपी प्रयोग करता है किसान भाई तो वहाँ पे, क्योंकि उसमें 18%
1: जी
0: नाइट्रोजन भी रहता है, तो
1: जी
0: 20 किलो वहाँ पे नाइट्रोजन वो मतलब यूरिया की डोज जो है उसको कम कर सकता है।
1: जी
0: और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा के साथ साथ इसका तरीका जो उपयोग करने का है वो भी उतना ही
1: जी
0: महत्वपूर्ण है।
1: कितनी हमें अब देनी है, कितनी
0: हाँ
1: बार में देनी है,
0: बिल्कुल,
1: 21 दिन
0: देखिए,
1: बाद कितनी देनी है
0: हाँ
1: हम।
0: जी, एक तो यूरिया जो है, क्योंकि इसमें जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, धान की अगर हम बात करें, दोनों तरीके के लॉसेज हैं।
1: जी
0: एक तो वाष्पीकरण, जिसको हम वोलेटिलाइजेशन लॉसेज बोलते हैं, अमोनिया के रूप में वो उड़ जाता है।
1: जी
0: दूसरा लीचिंग के रूप में, यानी नाइट्रेट के रूप में वो नीचे भी जाता है।
1: जी
0: तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इसे स्प्लिट में दें, दो
1: डॉक्टर
0: से तीन बार में।
1: साहब, हमारे किसान साथी हैं, प्रयास कर रहे हैं, फोन नहीं मिल पा रहा है। उनका प्रश्न आया है, ये
0: जी
1: रामपाल जी हैं करनाल से, ये
0: जी
1: पूछ रहे हैं बिजाई के समय पीलापन आ जाता है,
0: जी
1: उसका कारण क्या है?
0: बिजाई के समय मतलब पौध की बात कर रहे हैं या रोपाई के समय की बात
1: रुपाई
0: कर
1: की
0: रहे
1: बात
0: हैं?
1: होगी।
0: हाँ, रोपाई में तो देखिए, ये मैंने इसीलिए बताया, पीलापन इसीलिए आएगा अगर आपने सूखे में पौध उखाड़ी है, तो जड़ों का नुकसान होगा,
1: जी
0: जड़ों का नुकसान होगा तो वो पोषक तत्व नहीं ले पाएगी, तो उसका सीधा सीधा सा डेफिशिएंसी यही है कि उसमें पीलापन आता है।
1: जी
0: तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप एक तो पानी भर के ही पौध उखाड़ें, उसको कोशिश करें कि नीचे से पकड़ के बिल्कुल सावधानी पूर्वक उसको उखाड़ें, ताकि जड़ों का नुकसान कम से कम हो। और एक और ध्यान देना है कि जैसे अभी खाद से ही जुड़ी बात है ये
1: जी
0: भी, जो हम बात कर रहे थे अभी, तो जो हम नाइट्रोजन की या यूरिया की जो बात करते हैं, इसे देना ही हमें तब चाहिए, जैसे मान लो जो हमारा डीएपी है, पोटाश है, जिंक, ये तो हमें रोपाई के समय डालना है।
1: जी
0: और सबसे बढ़िया तरीका तो मैं कहूँ कि जब वो गाथड़ उठता है, कद्दू कर रहे होते हैं, उस टाइम डाल दें,
1: जी
0: तो जब वो गाथड़ बैठती है तो लगभग वही 1-1.5 इंच के आसपास वो खाद चला जाता है,
1: उसको पहुंचा
0: और जड़ों
1: देगा,
0: के बिल्कुल पास में
1: बिल्कुल नीचे
0: पहुंचता है।
1: पहुंचा देगा उसको।
0: लेकिन लेबर नहीं लगाते हो, कहते मेरा पैर जलते हैं, तो कोशिश करें कि जो ये पोटाश, डीएपी और जिंक है, ये जितना जल्द हो सके रोपाई के वो डाल दें। और ये भी ध्यान रखना है कि डीएपी के साथ जिंक मिला के ना डालें किसान भाई, कई बार
1: अच्छा
0: ये भी कर देते हैं, क्योंकि जिंक और डीएपी की आपस में
1: दोस्ती
0: मतलब
1: नहीं है।
0: दोस्ती नहीं है, उनकी उपयोग दक्षता कम हो जाती है।
1: जी
0: तो जैसे दो हैं, मान लो एक किसान, एक व्यक्ति उसको पोटाश और जिंक का छिट्टा मार दे,
1: जी
0: दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से डीएपी का
1: जी
0: मार,
1: भैया
0: तो और यूरिया का कोशिश करें कि जब वो जड़ें पकड़ जाए, हफ्ता 10 दिन बाद जब वो जड़ें पकड़ दे, तो कोशिश करें 3 से 4 स्प्लिट में डालें।
1: जी
0: तो एक तो जैसे 7 से 10 दिन के आसपास डाल सकता है, दूसरा किसान भाई हमारा जो है लगभग 25 से 30 दिन के आसपास, और तीसरी डोज जो है वो 42 से 50 दिन के आसपास,
1: जी
0: तो इस टाइम इसको वो पूरी करता है, तो उसको जो मैंने बताया कि लॉसेस भी कम होंगे उसकी, और जो उपयोग दक्षता है वो भी बढ़ती है।
1: ये दोनों विधियों में है, चाहे वो DSR हो चाहे वो कौन से
0: हाँ
1: हो।
0: हाँ उसमें देखिए डीएपी क्या है, मशीन है, तो मशीन में डीएपी चला जाता है, और मशीन के आखिरी जुताई से पहले पोटाश और जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। और जो यूरिया है, इसे तीन वही तीन स्प्लिट डोज में, ये फिर निर्भर करेगा कि डोज कितनी डालनी है, क्योंकि वो अवधि उसकी किस्म और अवधि पे निर्भर करता है। जैसे मान लो 90 किलो यूरिया डालना है, तो कोशिश करें कि 20 दिन पे, 40 दिन पे, 60 दिन पे, 30 30 30 इस तरीके से यूरिया डाल दे, तो 90 किलो उसका यूरिया भी पूरा हो जाएगा, और उसकी जो शुरुआती अवस्था में जो उसको आवश्यकता है, तो वो भी उसकी पूरी हो जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि DSR में जितना जल्दी खेत कवर हो जाए तो खरपतवार से कम्पीट भी कर पाता है, और उसमें फिर उसको बार बार दवाई करनी

0: की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: सर, जिस समय की बात आई है तो दो तरह की किस्म है, एक मध्य अवधि की और एक कम अवधि की, क्या दोनों में समय बराबर रहेगा?
0: हाँ, थोड़ा सा क्या है, जैसे जो मैंने आपको बात बताई है, जो कम अवधि की है उसमें जो आखिरी डोज है उसको आप 5-10 दिन अर्ली कर सकते हैं
1: जी।
0: जैसे मैंने 45 से 50 दिन की बात की है, तो आप जो 1509 या ये जो किस्में हैं इसमें आप 5 से 10 दिन अगर अर्ली कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं
1: जी। तो डॉक्टर, ये तो बात है कि खाद की
0: जी
1: और जल ही जीवन है।
0: हाँ, जल भी और एक खरपतवार प्रबंधन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि समय कम रह गया। तो इसमें भी बताना चाहूँगा कि एक तो लाइनों में अगर रोपाई करते हैं तो उसमें कोनोविडर या जो हम कहते हैं दूसरी तरीके से भी हम उसमें खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं दवाइयों पर निर्भरता है, तो उसमें अगर करते हैं तो प्रेटिला क्लोर जो रिफेट या इरेज के नाम से आती है उसका लगभग 700 से 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी जो तरीका है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हमने देखा है किसान भाई बोतल में छेद किया और उसको डाल देते हैं। कोशिश करें कि उसे रेत में मिला के और उसको फिर खेत में छिट्टा मारे ताकि वो बराबर मात्रा में सारे खेत में फैल जाए और उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ती है। और जो बाद में करता है, जैसे चाहे नॉमिनी गोल्ड का है, साथी का है, उस समय पानी को एक दिन पहले उतार दे और स्प्रे करने के एक दिन बाद उसमें पानी लगा दे। तो ये दवाइयाँ तो आजकल सभी किसान बड़े जागरूक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन तरीका कई बार थोड़ा सा उसमें कोताही बरत लेते हैं। तो उसमें मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ।
1: तो डॉक्टर संदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपका भी और आपके प्रोग्राम को सुनने वाले सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता
2: हूँ। ये तो सुन रहे थे भाई कार्यक्रम फोन इन, धान की रोपाई में सावधानियां, और डॉक्टर संदीप रावल से और बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहा
3: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: परंतु सब नहीं डाले
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार, इसमें मैं आपका अपना साथी गिरधारी
1: और मैं वीरेंद्र भाई
0: और दोनों कांत है। कार्यक्रम के सारे सुनने वाली मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम। वीरेंद्र भाई
1: जी, गिरधारी भाई,
0: जितनी मीठी प्यारी आपने राम राम की, इतना डोलू मीठा मीठा दिखा मैंने आपको।
1: अच्छा, जांच गया आप?
0: देख लिया तो निकले डोलू में तीसरी बार जाना रहे, देखो।
1: अच्छा, इसी से अंदाजा
0: लगा। तो खास बात कोई?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, खास बात है गिरधारी भाई, जब खास बात है तो खास ही होगी कोई ना कोई बात।
0: तो कब दिखाओगे उसने?
1: जरूर दिखावांगे, पर उससे पहले कुछ और बात भी कर लियो, क्योंकि कई बार नहीं हो जाना, लोग नहीं कहे यार ये बातें ही करो जा, खान पीन पे लग जा, मारी नहीं सुनते कुछ भी, ना माना कोई सुना दे कुछ ऐसी बात कि भी कोई लोक गीत सुना दे, कोई बाहर की नई बात सुना दे, कोई ऐसी सुना दे।
0: फिर एक बात है भी,
1: क्या
0: देखो ऊँ तो ब्याह है गुनी।
1: अच्छा,
0: तो कुछ बातें ब्याह कुछ बात याद रहते हैं, खास कर छोरियाँ ने।
1: यह बात कहें है, ठीक करे आप, गर्मिया का ब्याह की सुना रहे भी आप तो।
0: क्योंकि तो पता क्या है, एसी आ लाएगी।
1: यह भी बात,
0: लोग जून में ब्याह करते हैं।
1: गिरधारी भाई आपने सही कहा, नहीं पहला तो नहीं कोई कह रहा है तेरा सड़े में ले लियो ब्याह, नहीं हुआ क्या ना गर्मी में ले रहे हो, मर जाएंगे पसीने में और पानी पिया पिया के लोगों ने।
0: अरे एक बात, वीरेंद्र भाई
1: क्या बोला,
0: पहला ब्याह हो गई साल में दो बार थे।
1: यह भी है, फसल ठाक है,
0: फसल ठाओ आरती पीछे दो और
1: ब्याह कर लो, यह भी बात।
0: फिर आरती कर्ज बंद हो जाओ,
1: यह भी बात सही कह
0: रहे हैं। वह बात तो रही कौन
1: ना, ये भी तो ये हो रहा है कि भाई बारह महीने एक सा मौसम ला लो, जिस तरह आप कह रहे हैं एसी ऑन हो गए।
0: अरे एक बात, एक बदलाव हो रहा है क्या?
1: क्या
0: पहला छुरी बोल रहा कौन कुछ भी, उन्हें जितने मुझे तोड़ दे दो, जो मर्जी दे दो, ये तो छुरी मैंकले में है। मैंने इतनी सूट, इतनी साड़ी, इतनी मैंने टेलीविजन में न्यू न्यू दे दियो।
1: मतलब के आपका कहने का मतलब ये है?
0: मेरा नहीं, उनका।
1: अच्छा, ये भी कुछ कहना चाहिए?
0: इसी का मतलब है, मेरा कुछ मतलब नहीं।
1: अच्छा, चल फिर इनकी सुन ले, अपनी मान दे दो।
0: ले फिर देखो,
1: सुनाओ फिर।

0: देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।
1: यह संदेश आकाशवाणी के सहयोग से पेश किया गया था।
2: सुशील भाई,
3: राम राम जी।
1: और सुनाओ,
3: किसे ठीक ठाक जी? बहुत बढ़िया जी,
1: बड़े आमते से आयो।
3: हाँ जी,
1: इसे लग गया जो सारे पर्यावरण की चिंता आपने हो रही थी।
3: क्या करा जी, पर्यावरण में तो रहना पड़ा है, और अपनी जिस जगह पर रह रहे हैं उसकी तो टेंशन हो ही जावे है। तो
1: फिर उठा पानी पुनी जमा रहेगा, ये तो मी आया था।
3: हाँ,
1: उठा मिंडक भी होंगे, मछली भी हो जाऊंगी।
3: बिल्कुल जी, ये पानी बरसा है, इसमें नीरे जीव पैदा हुए हैं, तो मिंडक भी हैं।
1: अच्छा,
3: और जीव भी हैं, मच्छर भी पड़े हैं,
1: और कुछ भी है।
3: हाँ, हमारे जो बहुत से जीव हैं ये प्रकृति से जुड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा माने आज के टाइम में जो जोड़ आ जाए गाँव में कछुए भी देखने में मिले हैं। बते
1: कछुए देखे बहुत दिन हो गए।
3: हाँ, वो कदे कदे ये तो छिद्दा छड़ा दिखा है।
1: अच्छा। हाँ, तो कछुए तो बात याद आ गया, कुछ दिन है आज मेरे ख्याल था कुछ।
3: हाँ जी, आज 16 जून है, 16 मई
1: जून है,
3: तो आज कछुआ विश्व दिवस मनाया जा
1: रहा है। न्यू भी कछुआ का साहब, आपने बोलना भी कछुआ का साहब ही है, मिजमी सहज सहज कोई बात नहीं, कछुड़े चालना चल लो, पूरी चाल लो, चाल दो, ठीक है नी?
3: ना जी ना, आप कछुए की डाल भी चाल लेंगे यार, उस तरह भी चाल लेंगे। तो
1: अच्छा, कछुए जो है नी
3: जी,
1: कोई फायदा भी है, खाली उन देखने देखने काम में भी, इन्हें मुंडी भी तरह कर ली, और गोलो सा हो गया अपना, उसमें ईंट सी मार दी, टल्ले सा मार दिया, इसी काम में कुछ और काम भी आवे
3: ना जी ना। ये प्रकृति के संतुलन बनाने में बहुत सहयोग दे में
1: के
3: ये पानी में रहेगा ना, जो पानी में जो कबाड़ पैदा हो जाए, जो घास पैदा हो गहराई में, उसने खा के ना, एक तो उसका पर्यावरण पानी में जो गंदगी नहीं पैदा होने देंगे।
1: अच्छा,
3: दूसरा ये है, ये जो कछुआ दिवस मनाया जा रहा है, ये इसी वास्ते मनाया जा रहा है, अभी प्रकृति ने किस तरह अपने साथ संतुलन बिठाना है।
1: मैं कछुओं का नाम पे मेरी बात याद आएगी, ये तो क्या बहुत पुराने हैं, तो धरती पर बहुत पुराने हैं, तो
3: ये तो बहुत पुराने माने गए हैं, और ये
1: अपना से पुराने हैं।
3: हाँ जी।
1: अच्छा,
3: 2200 करोड़ वर्ष पुरानी प्रजाति मानी गई है या तो, और इनका आज का कछुओं का जो जीवन है 150 से 200 वर्ष तक का जीवन है।
1: बड़ा लंबा जीवन जीवन भी, भी तो कुमार कुछ भी दो। तो फिर ये जो कछुए नहीं, ये पानी में रहें।
3: हाँ जी।
1: अकबाड़ खावे
3: जी,
1: और क्या कर सके ये?
3: ये जी जो दूसरे जीव हैं।
1: अच्छा,
3: छोटे
1: छोटी मछली,
3: छोटी छोटी मछलियाँ हो जाए, छोटे छोटे जीव हो जाए, वो जो प्रकृति के लिए या पानी के लिए हानिकारक हो है, उन्होंने खाए हैं।
1: एक बताओ ना आप।
3: हाँ जी।
1: बेचारे कछुए हैं
3: जी,
1: अपना नुकसान नहीं देते
3: जी,
1: उनका फायदा भी है,
3: फायदा भी
1: फिर
3: है।
1: भी सह सह कम होने लग रहे।
3: हाँ जी।
1: इन्हें बचा किस तरह सका
3: इन्होंने जी? आप कई तरह से बचा सका। हाँ, जिस तरह की आप लोगों में जागरूकता ले सका।
1: हाँ, कह दें बिना।
3: हाँ जी, ये तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बना रखे भारत में, जो प्रकृति के विलुप्त होती जाती हैं उनको बचाने के लिए।
1: नहीं, अपना सरकार पर थोड़ी भरोसा रहेंगे, आपने मना करना काम ही तो।
3: हाँ जी,
1: भी आप के करोगे मैं के करूंगा। मैंने तो एक बात सोच ली, देख
3: जी,
1: मैं तो जितने प्लास्टिक है नी,
3: हाँ जी,
1: वह नहीं घेरता जमीन, ना नहर में घेरता, ना जोड़ में घेरता।
3: हाँ जी,
1: क्योंकि उस तक वह ये तंगो है बेचारे, मर जाए
3: जी। ये तो ये प्लास्टिक जो पोलिथीन है गामा में आवे है, ये जोड़ में चले जावे हैं, ये नाली के थ्रू चले जावे हैं, या कोई और घेर दे है, ये जाली फीस समझ के ना उसने खा ले हैं।
1: अच्छा।
3: जो कि इन इनके लिए बहुत घातक है, और कई जगह तो इनका जैसे मछली पालन करे हैं समुद्र में, तो मछली काटने नाले जाल फेंके हैं, उनमें फंस जावे हैं, उनमें फंस के भी मर जावे हैं। और गिरधारी भाई, आपने बताऊँ आजकल इनके अंडे की और इनका जो ऊपर का मोटा कवर हुआ है उसकी तस्करी भी बड़ी चल रही है, इनके कारण भी या जाति जो है विलुप्त होती जा रही है।
1: फिर तो ये रोकना पड़ेगा,
3: बिल्कुल रोकना पड़ेगा
1: जी। आप कहाँ कहाँ तो सारे रोकना पड़ेगा, रोको।

0: कौन है?
1: आप ही रोकेंगे, और कौन रोकेगा?
0: अपन है जो कोई इसकी तस्करी करे, इसका मतलब है सरकार तो बताना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: देख रही है हमारा उड़ा उड़ा कछुए हैं, इनके अंडे अंडे ठेक ले जाए लोग।
1: हाँ जी
0: और आप फिर जानते हैं पुलिस में,
1: बिल्कुल
0: बताना देख पड़ेगा अपने।
1: हाँ जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: यूँ
1: बताना
0: करो,
1: पड़ेगा।
0: आप भी या सबसे ले लो और मैं भी ले लूँ, कि
1: बिल्कुल
0: आपने ये कछुए बचाने हैं क्योंकि अपनी लाभदायक है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सारे मिलकर नहीं शपथ लेंगे, कछुआ की सुरक्षा करनी है।
0: और एक सबसे लेनी है माने
1: हाँ जी
0: वेंद्र भाई के, उसमें उसमें डोलू में कुछ था वो भी
1: अच्छा,
0: खाना अपने,
1: वीरेंद्र भाई के लेकर
0: कदी
1: आए
0: कदी लेकर
1: अंकल।
0: गरम बग जाए नहीं यूं।
1: हाँ बिल्कुल, ना एकला को नहीं खाने देंगे, सारे मिलकर
0: वेंद्र
1: खाओ
0: भाई
1: जी। गिरधारी
0: इन्हें
1: भाई,
0: क्लास से पैदा नहीं किए यूं।
1: हाँ गिरधारी भाई बिल्कुल सही गया आपने, बाट देख रहे थे, और सुशील भाई भी कछुए के संरक्षण के बारे में एक अच्छी
0: मैं
1: जानकारी
0: तो जिन्होंने नहीं
1: देंगे।
0: सोचा कि
1: और
0: कुछ जल्दी माना मार दें, कुछ खुआवा ही नहीं हूँ।
1: हाँ ना ना बिल्कुल नहीं गिरधारी भाई, अरे यो आपने खोल लिया, अरे यो पा दिया, ये देखो इसका रंग कैसा पीला पीला दिख रहा नहीं
0: रंग रंग
1: हो?
0: नहीं, मेरे ख्याल स्वाद बहुत बढ़िया होगा इसका।
1: हाँ क्यों बोला, क्या चल रहा है आजकल?
0: ये तो मेन फल तो आम का चल रहा
1: हाँ
0: है।
1: बाहर है, फिर यो देख लियो भी, आपने पहले देख लिया था कि डोलू के बराबर मैंने डोरा कह रहे थे, अब पीला पीला जा रहे हैं, ठंडा ठंडा, तो यो है मैंगो सेक।
0: एक काम करा
1: तो
0: इसकी
1: आप भी
0: तो
1: पियो, सुशील भाई ने पियाओ।
0: ना, और नहीं पींदे
1: अच्छा
0: पहले ये भाई उसे बाढ़ देख रहे, नहीं गुस्सा हो जाएंगे।
1: अच्छा अच्छा
0: जिन
1: ईद की
0: संदेश
1: बात थी।
0: भेज रखे
1: हाँ
0: हैं
1: चलो इनका रख लियो, इन्हें
0: पहले,
1: फिर पियाइयो,
0: फिर
1: पहले
0: पहले
1: इनकी सुन लियो,
0: पहले
1: इत्र
0: संदेश
1: ना
0: पढ़ लिया।
1: ये संदेश
0: तो यू संदेश आया योगी मोला बराड़ा जिला अम्बाड़ा
1: क्या कह रहे,
0: से। राम राम,
1: तुम्हारी तरफ से भी मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी राम
0: राम।
1: राम।
0: न्यू पूछो ऐ कौन है ये।
1: हाँ यही पूछेंगे भी, वो आप कह रहे योगी मोहल्ले से बोले थे राम
0: अच्छा
1: राम करी, तो हम भी राम राम कर दें,
0: तो ये
1: तो ये
0: है
1: बताओ कौन है?
0: अरविंद्र कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशबद और मनसुख मांडविया।
1: अच्छा तो क्या कह रहे हैं?
0: ये कह रहे मैंने आपके पूरे हफ्ता प्रोग्राम सुने,
1: अच्छा जी
0: बड़े अच्छे लग गए, और खासकर जो आपका युवा नहीं था संदेश मारे गीत,
1: जी,
0: ये अच्छा लग गया मैंने।
1: इतवार वाला।
0: हाँ उसी बात कर रही है।
1: अच्छा तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वैसे तो
0: और
1: ये नियमित श्रोता हैं गिरधारी भाई, और अपनी जो सुझाव दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि भविष्य में भी इनकी जो रुचि है उस पर हम खरा उतरेंगे।
0: लेकिन दोस्त ये बातें कह रहे नहीं, वह आप पूरी नहीं कर सकते हैं।
1: क्या बोला?
0: इनका रागनी सुना दियो एक विवाह
1: अच्छा
0: देखने, वह तो या तो एतवार ने या फिर
1: हाँ
0: विवाह।
1: यह बात है, जो ये चाहे हैं।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो उसमें लिख दो संदेश उजा।
1: जरूर सुनवाओगे, जिस
0: हाँ
1: तरह पहला सुनवा दे रहे।
0: हाँ तो कार्यक्रम में संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ये लिखते रहेंगे। एक संदेश यू भी आ रहा
1: क्या
0: देख लो ए किस तरह भी, यूँ तो अजीब सा लिखी दिया ना, तो भाई भाई यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, ढूंढूंगा थोड़ी और, या दूसरा ले लें।
1: हाँ दूसरा लियो।
0: दूसरा जीव गांव जांगड़ा से मांगराम सैनी, दिनेश सैनी, देवांश सैनी, प्रवीण सैनी और उनके परिवार के सदस्य हैं।
1: अच्छा जी ये
0: न्यू
1: क्या लिख रहे
0: पहला तो लिखा है राम राम सब गणित है,
1: जी?
0: फिर लिखा है निशाला भाई, गिरधारी भाई, विनोद, चतुरु, वीरेंद्र, सब ने सारे का कार्यक्रम बहुत बढ़िया दिए।
1: तो गिरधारी भाई सबसे पहले तो हमारी तरफ से भी इन सब ने मिट्टी मिट्टी
0: चश्मा
1: प्यारी प्यारी
0: चश्मा
1: राम
0: राम राम
1: राम।
0: चश्मा थोड़ा नंबर बड़ा गया
1: नहीं
0: नहीं।
1: नंबर भी बड़ा हो गया, और के लिए आपने इसका जो ये फोन है नहीं जिसमें मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, यो भी जरा कपड़े तो रजादा कर क्या, क्योंकि
0: अच्छा,
1: आपने भी दिखा दूर का दिख
0: आपका छोटा
1: गया।
0: फोन दिखता नहीं, मैं बड़ा कर दूंगा।
1: थोड़ा सा मोटा कर दिया
0: ये
1: ना।
0: भी देख लो, ये हैं जांगड़ा से मांगेराम सैनी,
1: हाँ ये
0: दिनेश,
1: भी दिखे देखिए
0: देवांश,
1: जी।
0: प्रवीण, ये हैं ठीक है नहीं।
1: हाँ तो मांगेराम जी और दिनेश जी और सभी को जो है, और देवाशी को हमारी तरफ से मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी
0: राम
1: राम
0: राम जी
1: राम,
0: धन्यवाद करें, हमारा काम इतना
1: हमारी
0: धन्यवाद
1: तरफ से भी उनका
0: कि इस
1: धन्यवाद,
0: तरह का कार्यक्रम सुनते रहो और हमारा हौसला बढ़ाते रहो,
1: और
0: क्योंकि
1: हमारा
0: ये
1: भी प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे
0: हाँ
1: कार्यक्रम इनको प्रस्तुति
0: क्योंकि
1: देते रहेंगे।
0: ये हैं तो भाई हम हैं
1: हमें
0: जी,
1: बिल्कुल
0: होने के नहीं है, चिट्ठी लिखने के नहीं,
1: बिल्कुल।
0: संदेश देने के नहीं, हम भी कार्यक्रम के देंगे।
1: और गिरधारी भाई इन नजर पास करो अपने थोड़ा सा, अरे भी हो देखो एक और आ रहा है जो हमारे नियमित श्रोता है।
0: ये श्रोता तो नियमित हैं, इन्हें कुछ गड़बड़ कर रखी इसमें,
1: क्या बोला?
0: ये तो लिखना भूल गई है,
1: नहीं नाम तो इन्होंने दे रखा है, रणधीर
0: बोला।
1: भाई।
0: अच्छा यू देख लिया, वो अपना पढ़ा देख लिया पहला।
1: हाँ बिल्कुल
0: अच्छा
1: बिल्कुल, आप नीचा से देख रहे
0: अब
1: थे
0: मैं
1: है
0: दुखो भी
1: ना?
0: यू किसका, ये तो पढ़ा, आप तो
1: बिल्कुल
0: पढ़ा देख गए,
1: हाँ जी
0: ये भी देखा जिसमें ठीक
1: बिल्कुल
0: है आपका है नहीं।
1: ठीक ठीक
0: हाँ
1: ठीक
0: तो ये है जुगुड़ी से रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, युगम, वीरेन, कीर्थ और उनके परिवार के सदस्य।
1: तो क्या कह रहे हैं?
0: सबसे पहले तो वही बात कि जो भी कार्यक्रम पेश करने वाले हैं उन्हें हमारा कहना था मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी राम राम ही प्यारे, इनकी भी राम राम मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी होगी।
1: बिल्कुल सही करे तुम्हारी तरफ से भी
0: भाई,
1: मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी राम राम।
0: आगे ये कह रहे हैं,
1: आगे क्या कहें,
0: साई कार्यक्रम सुनते हैं।
1: हाँ
0: मैंने बढ़िया अच्छा लग गया।
1: बिल्कुल इसमें इन्होंने जिक्र भी कर रखा कि विनोद भाई और सरिता दहिया जी के बारे में भी जिक्र कर रखा कि भी कार्यक्रम हमने सुने पिछले
0: अच्छा, अच्छे मतलब लगे। संदेश मेरा गांधी देखो पढ़ना अपना करें।
1: हाँ फिर यो साइड से मैंने दिख रहा है आपने
0: फिर
1: आप यो भूल गए थे लिखा हुआ।
0: तो जो सीता जी हैं हमारे नए जो हैं कार्यक्रम पेश करने वाले हैं
1: जी,
0: और उनका पहला प्रोग्राम था ये, उन पहला शक्ति मंच में आ रहे थे मैं।
1: हाँ अब इधर किसान वाणी से जुड़े,
0: तो उनका कार्यक्रम अच्छा लग गया। तो भाई ये नहीं हमारे बहुत से साथियों ने
1: बहुत से साथी
0: तो देखियो नहीं,
1: हाँ अभी श्रोताओं को जो हमारे नए जो साथी है वो सुनने को मिलेंगे उनकी आवाज।
0: लठ काट लेंगे,
1: लठ काट लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, तैयार हो गए।
0: तो रणधीर जी कह रहे हैं कि हम आपके नियमित श्रोत हैं और आपके हमने हफ्ते भर के कार्यक्रम सुने जिसमें मुर्गियों के बारे में सुना हमने आपको, जो है बाकी मिट्टी की जांच के बारे में सुना, बहुत सी बातें मैंने सुनी आपकी
1: जी,
0: और हमें कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा।
1: देखो समय अनुरूप जो है वो कई करानी गिरधारी भाई के समसामयिक विषयों से संबंधित जो कार्यक्रम है प्रस्तुति दी जाए तो बेहतर रहे, क्योंकि इन दिनों खेत खाली थे तो मिट्टी की जाँच के कार्यक्रम दिए गए और वो इनको बेहतर लगे तो उसके लिए धन्यवाद।
0: एक बात और,
1: क्या कह रहे
0: कि मैंने इभी मिट्टी की जांच पे डॉक्टर किरण का प्रोग्राम सुना था।
1: अच्छा
0: और मैंने बड़ा अच्छा लगा,
1: तो उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर है कि इन दिनों किसानों की जरूरत भी थी कि मिट्टी की जांच पानी की जांच कैसे कराई जाए, क्योंकि अब जाना गिरधारी भाई आजकल में जो है धान की रोपाई भी शुरू होगी।
0: तो कार्यक्रम में जो है पत्र बहुत संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी लिखते रहेंगे
1: जी।
0: और जा चाहते एक संदेश हो रहा है, एक संदेश हो रहा भाई, और यो है तेजामुड़ी से बंशलाल संधू व उनके परिवार के सदस्य।
1: ये क्या कह रहे,
0: ये कह रहे हैं कि विनोद और सरिता ने जो है वीरवार को 13 जून को आपकी पसंद में संदेश बोल कर और हमारे संदेश पढ़ दिए, ठीक नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग गया।
1: तो जाहिर है गिरधारी भाई के बंशीलाल संधू जी के और उनके परिवार के सदस्यों को जो इनके संदेश पढ़े गए उसमें अच्छे लगे, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आगे संदेश लिखते
1: और आगे लिखते रहेंगे संदेश, और वैसे ही हमारे नियमित श्रोता हैं गिरधारी भाई
0: जी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इतर पकड़।

0: वीरेंद्र भाई
1: जी गिरधारी
0: भाई छोड़ दो, जो मैंगो शेक है वो ना जो
1: अच्छा
0: न्यूगड़ी का है, बाकी का जगह पियो।
1: हाँ कभी इसी के ले लगे रहो
0: तो जाते जा।
1: हाँ जरूर क्यों नहीं।
0: इसके अलावा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी
1: और वीरेंद्र भाई की
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिषमा की ओर से स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के इस विशेष संवादात्मक कार्यक्रम आपकी बात में। और अगले कुछ मिनटों तक हम आपसे जुड़े रहेंगे आपके अपने विचारों, सुझावों, प्रतिक्रियाओं और उन संदेशों के माध्यम से जो आपने हमें भेजे हैं ईमेल्स के जरिए। ये दोस्तों आपका ही कार्यक्रम है, हमारे बीच एक सशक्त संवाद का माध्यम है ये कार्यक्रम। आपके जो ईमेल्स हमें बतलाते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रमों में क्या पसंद आया, किन विषयों पर आप और अधिक सुनना चाहते हैं और किन बातों में आप सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणा है, आपकी सराहना हमारा उत्साह बढ़ाती है और आपकी शिकायतें हमें और बेहतर बनने की दिशा दिखाती हैं। तो आज हमें ईमेल अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुई, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि विचार, आज प्राप्त हुए प्रत्येक ईमेल में अपनेपन की भावना और सार्थक संदेश छिपा है, जिन्हें हम पूरे सम्मान के साथ आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपकी बात और जानते हैं कि आज हमारे श्रोताओं ने अपने संदेशों के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहा है। उम्मीद है कि आप भी आगे भी आप इसी तरह से इस कार्यक्रम में अपने विचार और सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हर हफ्ते की तरह भेजते रहेंगे, ताकि जो संवाद है, जो निरंतरता है इस कार्यक्रम की, वो बनी रहे। तो आज का जो पहला संदेश हमें नजर आ रहा है वो है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा के श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। आप कहते हैं कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम आपकी बात पेशकर्ता को हमारी ओर से ठंडे ठंडे रसगुल्ले जैसा नमस्कार। तो क्या ही बात है ये, चलिए आपके इस स्पेशल जो आपने तरीका ढूंढा है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और साथ ही हम भी आपको बहुत ही सादर पूर्वक, बहुत ही आदर से कहते हैं कि हाँ नमस्कार। आपका नमस्कार जो आपने भेजा है उसको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। तो आपने आगे लिखा है कि साथियों 24 जून को हमारा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र 35 वर्ष का हो जाएगा और इस खुशी के मौके पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की ओर से स्थापना दिवस पर क्या कुछ कोई खास हो रहा है, जरूर अपने श्रोताओं के साथ साझा करें। कल कार्यक्रम युवा फरमाइश में जो साथी कार्यक्रम पेश कर रहे थे उनमें एक गीत पर एक ही नाम बोला, क्या क्या यह दो चार श्रोताओं के ही नाम आपको मिले थे, वह उद्घोषक भाई। जब भी आते हैं नाम बोलने से एलर्जी है, यानी कि ये ज्यादा नाम शामिल करना पसंद नहीं करते हैं। एक गाने पर कम से कम 7-8 श्रोताओं के नाम तो शामिल होने चाहिए, तभी श्रोताओं को कार्यक्रम अच्छा लगेगा, नहीं तो उनकी नजरों में मेरी नजरों में जीरो है कार्यक्रम, इस और ध्यान दें, धन्यवाद। तो सर्वप्रथम तो आदरणीय राहुल जी और आपके जो भी साथी हैं जिनका नाम आपने अपने इस ईमेल में लिखा है, उन सभी को हमारी ओर से बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की और आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। साथ ही ये दिन आ रहा है, अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, तो कार्यक्रम के प्रति जो आपने अपना स्नेह, सुझाव और प्रतिक्रिया साझा की है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपका यह सुझाव कि गीतों के दौरान अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम शामिल किए जाएं तो निश्चित रूप से विचारणीय है। हर श्रोता चाहता है कि उनका रेडियो पर नाम सुनाई दे और यही अपनापन आकाशवाणी की सबसे बड़ी पहचान भी है। हम सभी श्रोताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। साथ ही दोस्तों यह समझना भी आवश्यक है कि प्रत्येक कार्यक्रम की अपनी एक निर्धारित समय सीमा होती है। कई बार गीत, संदेश और सूचनाएं अन्य आवश्यक प्रस्तुतियों के कारण सभी श्रोताओं के नाम शामिल नहीं होते, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि युववाणी कार्यक्रम है, तो भाई अगर वो कल बोला गया सोमवार था तो कल का जो दिन रहता है वो हमारे फरमाइशी कार्यक्रम का रहता है युववाणी पर, तो ऐसे में खाली एक श्रोता का नाम पढ़ देना तो ये तो शायद कतई नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी हमारे श्रोता साथियों के साथ। तो हमारे जो भी कल प्रस्तुतकर्ता साथी थे उनको इस बात के लिए हम जरूर मैसेज करेंगे या संदेश देंगे एक उचित माध्यम से, कि भी जब भी आप इस प्रोग्राम को दें तो सिर्फ एक नाम नहीं, कम से कम 3-4 श्रोताओं के नाम तो शामिल करें, ताकि सभी श्रोता अपने नाम सुन करके जो इतने मेहनत से अपने नामों को भेजते हैं यहाँ तक और वक्त निकाल करके, टाइम निकाल करके वो मैसेजेस करते हैं, तो उन सभी के नाम शामिल जरूर होने चाहिए।
ये बात आपकी गौर करनी है और आपके सुझाव को सकारात्मक भावना के साथ संबंधित टीम तक जरूर पहुंचाया जाएगा ताकि भविष्य में जहां तक संभव हो अधिकाधिक श्रोताओं के नाम शामिल किए जा सके और सभी को अपनेपन का एहसास हो। और आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों आप सभी हमारे श्रोता, आपके सुझाव, सहयोग और निरंतर प्रेम से ही यह मंच जो है वर्षों से लोगों के दिलों में अपनी जगह विशेष तरह से बनाई हुई है और आशा है कि आगे भी आप इसी प्रकार से अपने बहुमूल्य सुझाव हमें देते रहेंगे। और आपने जिक्र किया कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जो है वो अपना 35वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो खुशी के मौके पर आप सब भी होंगे, आप सभी जो भी कार्यवाही रहेगी वो आपको आने वाले कुछ दिनों में उसके बारे में जरूर अवगत कराया जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब आप, क्योंकि आप लोगों को केंद्र से इतना ज्यादा लगाव है वो आपकी बातों से साफ झलकता है। 24 जून का जो दिन है वो बहुत ही खास है और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से चाहे वो प्रस्तुत करता है, चाहे टेक्निकल टीम है या फिर यहाँ पर जो भी कार्यरत लोग हैं, उनके अलावा जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं उन सबको भी इस दिन का, इस दिन विशेष का बहुत ही इंतजार रहता है। तो क्या कुछ होगा उसकी भी प्लानिंग चल रही है, जो कुछ भी होगा वो उससे आपको जरूर अवगत कराया जाएगा क्योंकि श्रोताओं की भागीदारी जरूरी है। तो जो कुछ भी निकल करके आएगा इस सब पर विचार मंथन किया जा रहा है, तो जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा उससे आपको आने वाले कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही आपको जरूर अवगत कराया जाएगा ताकि आप अपनी भागीदारी उसमें निश्चित रूप से करा सकें। और आपके भेजे हुए इस ईमेल के लिए कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा के जितने भी साथी हैं हमारे, रवि कुमार राहुल जी और उनके परिवार के सभी सदस्य, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं ये कुछ एक छोटा सा गीत।

ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हूं आप पे निसार। बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार।

0: तू पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना, सच कदा मन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत को खजाना है कभी तो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता,
1: जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता।

0: गाएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेहरा भी गाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेहरा भी गाएंगे,
1: बधाई हमने गाई है तो हम सेहरा भी गाएंगे।

0: मंगल भवनिया मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: स्वागत है तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से आपके कार्यक्रम आपकी बात में। तो दोस्तों अगला ईमेल जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मिला है डेर बॉटम गुजरात के श्रोता हैं धीरज वीर आबारी जी। आदर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। आदरणीय प्रदीप जी ज्योतिषमा जी और विपिन सहगल जी और प्रस्तुतकर्ता को सादर नमस्कार। आज सुबह सवेरे कार्यक्रम में श्वेता जैन जी की पेशकश सर्वोत्तम रही हृदय से धन्यवाद। हमारे ईमेल आपकी बात कार्यक्रम में शामिल होती है और आप सभी अनाउंसर आत्मीय सभार उत्तर देने हेतु हृदय से धन्यवाद। तो 12 जून 2026 सुबह सवेरे कार्यक्रम में अनुराधा जी की पेशकश लाजवाब रही और फोन इन कार्यक्रम भी पसंद आया। 13 जून का सुबह सवेरे कार्यक्रम जानकारी भरा रहा जो कार्यक्रम महक जी ने पेश किया था। साथ ही पानी और कुपोषण विषय पर फोन इन कार्यक्रम सर्वोत्तम महक जी की शानदार पेशकश के लिए हृदय से धन्यवाद। और निधि जी श्वेता जैन जी शशिबाला जी प्रमिला जी और गेशना जी राजीव धीमान जी और जो नाम रह गए वह सभी अनाउंसर्स की पेशकश सुपर से ऊपर होती है। सभी को हृदय से धन्यवाद और आप हैं हमारे श्रोता धीरज बीराबारे जी। तो सर्वप्रथम आपके इस ईमेल के लिए इस प्यार भरे ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से आपने जो हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि जो इतना आत्मीय और प्रेरणादायक ईमेल हमें भेजा। आपका स्नेह विश्वास और नियमित सहयोग हमें अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करता है। साथ ही जानकर खुशी हुई कि आपको सुबह सवेरे कार्यक्रम की प्रस्तुतियां विशेषकर श्वेता जैन जी की पेशकश तथा जो उन्होंने पानी और कुपोषण विषय पर आपको फोन इन कार्यक्रम के जरिए जानकारी दी वो भी आपको उपयोगी और प्रभावशाली लगी। आपने कार्यक्रम के विभिन्न उद्घोषक जो है हमारे सभी महक जी कीर्ति जी निधि श्वेता जैन जी शशि बालाजी प्रमिला सैनी जी कृष्ण गेशना जी और राजीव धीमान जी इन सभी साथियों के कार्य जिस उदारता से सराहना की है उसके लिए हम आपको विशेष आभार प्रस्तुत करते हैं। साथ ही जो आपके प्रोत्साहन भरे शब्द हैं इतनी दूर गुजरात से आप एक पश्चिमी सिरा है वो भारत का जहाँ से आप कार्यक्रमों को सुनते हैं और वहाँ से आप प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी ईमेल हमें भेज रहे हैं अपने शब्दों को आपने हम तक पहुँचाया है तो ये हमारी पूरी टीम के लिए नई ऊर्जा और उत्साह का स्रोत बनेंगे आपके शब्द। जानकर खुशी होती है कि आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और विचार कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं आपके और आपको ये अच्छा लगता है। श्रोताओं की सक्रिय भागीदारी हमारे लिए भी बेहद जरूरी है और आपके जैसे जागरूक नियमित और सकारात्मक सोच वाले श्रोताओं के सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें कार्यक्रमों को और अधिक ज्ञानवर्धक उपयोगी तथा रोचक बनाने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही भविष्य में भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। और जिन भी साथियों का आज आपने जिक्र किया है जो भी हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी अगर वो प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो दिल से आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे होंगे और बहुत सारे आपको सुन करके देखिए प्रशंसा सभी को ही अच्छी लगती है। तो जिनका भी आपने नाम लिया है जिनकी भी आपने सराहना की है उन सभी को ये अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम में सुन करके और आपका जो भी आपने जो भी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं उन सभी से हमारा तो मार्गदर्शन होता ही है। साथ ही आपके भी हम स्वस्थ जीवन की सुख समृद्धि की और मंगल जीवन की कामना करते हैं और एक बार पुनः आपको बहुमूल्य समय निकाल कर इस ईमेल को भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप विश्वास रखते हैं और निरंतर अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: और श्रोता अब है कार्यक्रम में ये आखिरी ईमेल जो कि हमें मिली है संजीव कुमार जी हैं खुखनी गांव चौगांव इनकी इनका पोस्ट ऑफिस है और इंद्री करनाल के हैं श्रोता। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपका ईमेल तकरीबन हर हफ्ते ही हमें हासिल होता है। आप अंग्रेजी में अपना ईमेल भेजते हैं जिससे कि हमने आपको पहले भी कई बार कहा कि आप कोशिश कीजिए कि ऐसी बात को आप हिंदी में लिख करके भेजें क्योंकि जो आकाशवाणी है यहाँ उसका माध्यम हिंदी है। तो आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि आप बेहतर होगा कि अच्छा लगेगा हमें भी कि आप हिंदी में लिख करके भेजें। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती है, आती है आपको हिंदी भी। तो अगली बार हम इंतज़ार करेंगे आपके ईमेल का कि आप उसको निश्चित तौर पर हिंदी में भेजेंगे। तो आप कहते हैं कि सुबह सवेरे कार्यक्रम जो आज के दिन यानी 16 जून को जो प्रस्तुत किया गया और कल के दिन यानी सोमवार को 15 जून को, तो दोनों ही प्रोग्राम आपने सुने। आप इसके कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। तो आज जो प्रोग्राम आपके लिए पेश किया गया वो उसमें श्वेता जैन जी ने प्रस्तुत किया था। तो जो भी श्वेता जैन जी के द्वारा जानकारी दी गई उसमें इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय इनके बारे में जानकारी दी गई। यस्टरडे दिस प्रोग्राम वॉज जो कल का कार्यक्रम था वो संध्या मिश्रा जी ने पेश किया था और उन्होंने जो जानकारी दी थी वो थी वर्ल्ड विंड एनर्जी डे और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और अष्टांग योग के बारे में। तो आप कहते हैं कि जितनी भी ये नॉलेज है जो भी जानकारी यहाँ से दी जाती है इन सभी प्रस्तुतकर्ता साथियों को जिसमें श्वेता जैन जी और संध्या जैन जी, आप उनको अपनी ओर से धन्यवाद पेश करना चाहते हैं। तो आज का जो ये भी प्रोग्राम आपने जो सुने आज का और कल का और सुबह सवेरे प्रोग्राम जो है आपका फेवरेट है, हम जानते हैं कि भी आप उसके रेगुलर लिसनर हैं, अच्छे से सुनते हैं आप उसको और सारी जितनी भी जानकारी साझा की जाती है उन सभी को आप सुनते ही नहीं हैं, उनको नोट भी करते हैं और साथ ही साथ कहीं वो आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ला रही होंगी ये सब जानकारी, आपके ज्ञान में तो इजाफा हो ही रहा होगा। और साथ ही आपने लिखा कि संध्या मिश्रा जी और श्वेता जैन जी जिनका कि कल का और आज का प्रोग्राम रहा, आपने उन दोनों की सराहना भेजी है। तो अगर वो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं तो आपको तो थैंक यू बोल ही रहे होंगे वो निश्चित तौर पर। और आपने बाकी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं आप उनमें भी अपनी भागीदारी जरूर कराएं ताकि अन्य जो प्रोग्राम हैं जहाँ पर कि और भी जिनमें और कार्यक्रमों में भी जिक्र होता है, जानकारियां दी जाती हैं, जैसे शाम को युवाणी कार्यक्रम हो गया या रात को आपकी बात कार्यक्रम है, माफ कीजिएगा कुछ बातें और कुछ गीत कार्यक्रम है, तो उसमें भी आप सुन सकते हैं, उसमें भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयर की ही जाती है। साथ ही आगे आप लिखते हैं कि एक प्रॉब्लम टुडे आई हैड सेंड द करेक्ट आंसर, जो कि आपने एक सही आंसर भेजा सुबह सवेरे कार्यक्रम में, लेकिन आपका मैसेज उसमें शामिल आप बट माई मैसेज वॉज डिलीवर्ड आफ्टर, लेकिन आपका जो मैसेज था वो 8:45 के बाद यानी 9:45 के बाद में शामिल हुआ। तो जो भी रीजन रहा कि आपको नहीं जानकारी इस चीज की कि आपका प्रोग्राम में नाम शामिल हुआ या नहीं और आपके नेटवर्क का इशू है या आपके मोबाइल फोन की कोई कमी है या फिर क्या ही इसका रीजन रहा, तो अगर ऐसा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आप मान रहे हैं उसको, तो हमारे एंड पर तो देखिए जो भी नाम 8:45 से पहले पहले आएंगे तो उन सभी को शामिल करेंगे। तो जितने भी हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी हैं जो कि कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर आते हैं ये उनका दायित्व है और वो सभी पूरे भरसक प्रयास करते हैं कि कोई नाम कोई भी श्रोता हमारे इस चीज से वंचित ना रह जाए कि अगर उनका जवाब सही है, उनका आंसर सही आ रहा है, उनका उत्तर उन्होंने सही तरीके से लिख करके भेजा है और सही टाइम के अंदर भेजा है, समय का भी थोड़ा अनुपालन करना पड़ता है, तो अगर वो समय सीमा के रहते आपका जवाब आता है तो उसके लिए तो हमारे सभी जितने भी प्रस्तुतकर्ता साथी हैं वो पूरी कमर कसकर बैठते हैं कि कोई श्रोता हमारे वंचित न रह जाए, कोई श्रोता जिनका सही उत्तर आया है वो किसी भी नजर से उनको नजरअंदाज नहीं करते हैं। रही बात आपकी कि आपने ये लिखा कि टेक्निकल फॉल्ट है कोई, तो भाई आप अपने सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके एरिया में है या जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने इसमें फोन में या जिस जरिए से भी आप अपना मैसेज भेजते हैं, तो वहां कुछ अगर इशू है तो देखिए उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाँ, हमारे केंद्र तक आपका मैसेज पहुंचेगा और अगर तय सीमा के अंदर पहुंचेगा तो आपके नामों को जरूर शामिल किया जाएगा। पहले भी तो आपके नाम शामिल होते रहे हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं बीच में रह जाते हैं मैसेज या कुछ और ये नेटवर्क का इशू रह सकता है और कोई कारण बन सकते हैं, तो आप निराश ना हुआ कीजिए। और वैसे हम जानते हैं कि आप हमेशा अपनी भागीदारी इस कार्यक्रम में, आपकी बात कार्यक्रम में तो जरूर दर्ज कराते हैं। तो इस ईमेल के लिए जो आपने भेजा है समय निकाल करके, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और फिर से वही अनुरोध, जैसे कि हमारे और बहुत सारे साथी भी आपसे कह चुके हैं कि आप कृपया कर अपनी ईमेल को हिंदी में भेजें, ताकि जो बहुत सारे हमारे श्रोता साथी हैं जो कि अंग्रेजी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं वो आपके ईमेल को ढंग से समझ पाएं। कोशिश हमारी रहती है कि आपके ईमेल को हम हिंदी में ही पढ़ें, बस थोड़ा सा कष्ट हम आपसे चाहेंगे। अनुरोध है हमारा, विनम्र अनुरोध है कि आप अगली बार जब ईमेल भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। क्या आप हमारी खुशी के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते कि आप अपनी ईमेल को हिंदी में लिख करके भेजें? तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके ईमेल को तो देखिए इंग्लिश में आ रहा है तो भी हम पढ़ रहे हैं, और हिंदी में आएगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो उसका प्रचार प्रसार भी एक दायित्व है आकाशवाणी का। तो अंग्रेजी नो डाउट कि वो बहुत जरूरी है, लिंक लैंग्वेज है।

तो आनी चाहिए सभी को, लेकिन ये जो आकाशवाणी का मंच है वहां से हिंदी का ही प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए, ये भी हमारा ही दायित्व है। तो अनुरोध, आप हमें उम्मीद है कि आप इस अनुरोध को जरूर स्वीकार करेंगे और हम इंतजार करेंगे आपके हिंदी वाले ईमेल का। और इसी के साथ अब चलने का वक्त हो चला है, तो हम आपको अपना ईमेल एड्रेस नोट करवाए देते हैं, आपकी बात akashvani@gmail.com। तो इंतजार रहेगा हमें अगले हफ्ते फिर आपकी अमूल्य प्रतिक्रियाओं का, आपकी जो भी शिकायतें हों, मीठी खट्टी मीठी जो भी आप कहना चाहें वो सब लिख भेजिए इस ईमेल एड्रेस पर, और अपने सुझाव दें, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो लिख भेजिए आकाशवाणी आपकी बात akashvani@gmail.com पर। इंतजार रहेगा हमें। धन्यवाद, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम, खास कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त ज्योतिष माँ। स्वागत है आप सभी का। आज दोस्तों हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय की जो इन दिनों हर घर से जुड़ा है और हर जबान पर है, वो शब्द गर्मी। जी हाँ, गर्मियों में स्वास्थ्य और खान पान, ये विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप और बढ़ता तापमान लेकर

कराता है। और ऐसे में यदि हम अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान ना रखें दोस्तों, तो थकान, डिहाइड्रेशन, लू और पेट संबंधी समस्याएं आम तौर पर हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। आज इस सब पर ही बात होगी। बाकी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गर्मी को कैसे हराना है, कैसे उसको दिखाना है कि नहीं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, बस अपना ख्याल रखना है हमें और गर्मियों को, गर्मी जो नाम है उसको दूर भगाना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आज इन सभी पर जिक्र होगा, लेकिन कार्यक्रम में गीतों का भी तो समावेश होगा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, श्रोताओं, गर्मियों के मौसम में स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाने की जरूरत होती है। तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर हमारे शरीर पर जल्दी पड़ता है, इसलिए सबसे पहली बात कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। इसको अपनी आदत बनाइए, प्यास लगे या ना लगे समय समय पर पानी पीते रहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। खान पान की बात करें तो हल्का ताज़ा और घर का बना भोजन सबसे अच्छा होता है। अपनी थाली में मौसमी फल जैसे तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी और आम को संतुलित मात्रा में शामिल करें। वहीं बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनको कि पी करके आप ठंडक के साथ साथ ऊर्जा भी महसूस कर सकते हैं। वहीं जो बात रही कि ये सब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सब का आप ज़रूर सेवन करेंगे, इनको अपने आहार में शामिल करेंगे। अब बात के अगर ज़रूरी ना हो तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच जब तेज़ धूप होती है उसमें निकलने से हमें बचना चाहिए। बाहर जाना भी पड़े तो सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने, सिर पर टोपी या गमछा रखें और धूप से बचाव के लिए छाते का उपयोग करें। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है, और नींद की जो डोज है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इस वक्त है अब एक गीत की गुंजाइश।

तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में सही कपड़ों का चुनाव भी अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तेज धूप और बढ़ते तापमान से बचने के लिए हमेशा हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना सबसे बेहतर माना जाता है। सफ़ेद, क्रीम, हल्का नीला, हल्का हरा या गुलाबी, हल्का बेबी पिंक जिसे कहते हैं, जैसे रंग सूर्य की किरणों को कम अवशोषित करते हैं, जिससे शरीर जो है वो अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। गर्मियों में ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। इससे शरीर में हवा का संचार अच्छी तरह होता है और पसीना आसानी से सूख जाता है, जिससे घमोरियाँ या त्वचा संबंधी समस्याओं का जो खतरा है वो कम हो जाता है। वहीं कुछ बहुत अधिक तंग या सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये पसीना सोख नहीं पाते और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। यदि आपको धूप में बाहर निकलना हो तो पूरी बाजू के सूती कपड़े पहनना बेहतर रहता है। इससे त्वचा सीधे सूर्य की तेज किरणों के संपर्क में नहीं आती, और साथ ही आप सिर पर टोपी, सूती गमछा या दुपट्टा रखें, ताकि आंखों की सुरक्षा के लिए भी आप धूप का चश्मा पहन सकते हैं। याद रखिए कि मौसम के अनुसार सही पहनावा ना केवल हमें आराम देता है, बल्कि लू, धूप और जो त्वचा संबंधी कई समस्याएं होती हैं उनसे भी बचाता है। इसलिए गर्मी में फैशन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें और ऐसे कपड़े चुनें जो आपको पूरे दिन ठंडक और आराम का एहसास कराएं।

0: और दोस्तों, जहां हम जिक्र कर रहे थे कि भी गर्मी में अपना ध्यान कैसे रखें, तो याद आता है कि जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने मौसम के अनुसार खान पान की जो परंपरा बनाई थी, उसके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार रहता था। गर्मी में शरीर को ठंडक देने के लिए कई पारंपरिक पेय आज भी उतने ही लाभदायक हैं, जैसे कि सौंफ का शरबत, बेल का शरबत, आम का पना, जो कि लू से बचाव में बेहद सहायक रहता है। वहीं ठंडाई, जी हाँ, छाछ या मठा, नींबू, पुदीने का शरबत, जौ का सत्तू, जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहद लोकप्रिय है, राबड़ी या राव, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बाजरे या जौ से बनने वाला एक पारंपरिक पेय जो शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। और यदि आपके क्षेत्र में गोंद के तीरे या किसी स्थानीय पारंपरिक शीतल व्यंजन का जो चलन है, जी हाँ, आप सभी के घरों में है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनका निर्वहन अगर करें तो गर्मियों को मात दी जा सकती है। वहीं दही हो गई या रायता या कढ़ी, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल जैसी हल्की जो सब्जियां रहती हैं, हरी हरी सब्जियां, उन सभी का इस्तेमाल आजकल करना चाहिए। मूंग की दाल है और उसकी खिचड़ी, वहीं सलाद में आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर तो आजकल नहीं मिलती है, हाँ, लेकिन खीरा, ककड़ी जो हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल हमें अपने खान पान में करना चाहिए। और घर का ताज़ा भोजन ज़रूर करना चाहिए, घर का ताज़ा भोजन ही, उस पर ही यकीन करना चाहिए। कि जो बाहर वाले हैं, देखिए, वो उसमें मसाले डाल देंगे, सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जो घर का साफ सफाई है या जो आपका अपनत्व है, प्रेम है, वो नहीं डाल सकते हैं, उसकी कमी हमेशा रहेगी उसमें। और गर्मी के मौसम में भोजन ऐसा हो जो पेट पर भारी ना हो, हल्का हो, सुपाच्य हो, और ताज़ा भोजन शरीर को ऊर्जा भी देता है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। वहीं हमें बचना चाहिए कि बासी भोजन, खुले में बिकने वाले जो कटे हुए फल होते हैं, उनको ना खरीदें और ना ही खाएं। बहुत अधिक तला भुना जो भोजन रहता है, उससे भी बचना चाहिए। और अत्यधिक मिर्च मसाले आजकल, थोड़ा उनको भी नज़रअंदाज करें, उनको इस्तेमाल कम ही करें। बहुत ठंडे पे, यानी कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और आपने तुरंत निकाल के फ्रिज से पानी पी लिया, तो ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बर्फ का अत्यधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए। और बार बार जो फास्ट फूड है, उसकी तलब उठती है, तो उससे भी थोड़ा सा तो बचने की कोशिश करनी ही चाहिए। और कभी भी खाली पेट धूप में घर से बाहर ना निकलें। बाहर जाने से पहले पानी या छाछ पी लें, या सिर को गमछी या टोपी से ढकें। जेब में प्याज रखने की पुरानी मान्यता का जो है, वो भी, उसका भी अनुसरण किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रमाण भी इसके लिए है कि बचाव के लिए आप पानी, छाया, हल्के कपड़े और पर्याप्त तरल पदार्थ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और प्याज का जो जिक्र हमने किया कि भाई, पुराने लोग अपने जेब में प्याज रख लेते थे, जिससे कि लू ना लगे, और लू लगने पर तुरंत छायादार स्थान पर जाएं, पानी या ORS लें, और आवश्यकता हो तो चिकित्सक से, यानी डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चों के लिए खासतौर पर, क्योंकि बच्चों की आजकल के दिनों में रहती हैं छुट्टियाँ और उनकी धमा चौकड़ी, तो भाई कई घर जो हैं वो इन सब बच्चों से परेशान हो चुके हैं, और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल खुलें और जल्दी से जल्दी उनको उनके बैग के साथ रवाना किया जाए स्कूल्स की ओर। तो बच्चों को धूप में अधिक देर खेलने ना दें। बुजुर्गों को समय समय पर पानी पीने की याद दिलाते रहें, और घर में रहने वालों को भी पर्याप्त तरल पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेते रहना चाहिए। और इस सब के साथ ही अब क्यों ना एक गीत सुना जाए।
1: बजाते रहो, या अपने आप में बहुत ज्यादा समझ आया।

और दोस्तों बजाते तो रहो, लेकिन भाई गर्मी की भी थोड़ी बैंड बजानी है, तो उसके लिए पेय पदार्थों की बात तो हमने की, लेकिन आइए अब बात करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की उन पारंपरिक व्यंजनों की जो गर्मियों में खास तौर पर बनाए जाते हैं और जिनको खाया जाता है, जिसे हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हर क्षेत्र ने अपने मौसम के अनुसार खान पान की परंपरा विकसित की है। जैसे बिहार और झारखंड में गर्मियों के दिनों में सत्तू के बने जो पराठे रहते हैं, लिट्टी और सत्तू का घोल काफ़ी लोकप्रिय है और ये शरीर को ऊर्जा भी देता है और लंबे समय तक तृप्त रखता है। वहीं राजस्थान में राब और बाजरे की राबड़ी, कैर सांगरी जैसे पारंपरिक व्यंजन मौसम के अनुसार खाए जाते हैं। गुजरात में खड़ी, खिचड़ी, दूधी यानी लौकी की सब्जी और हल्का भोजन गर्मियों में काफ़ी पसंद किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में दही, रायता और छाछ के साथ सादा भोजन गर्मी में राहत देता है। तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की ओर चलें तो वहां कच्चे आम की चटनी, लौकी, तोरई, परवल जैसी मौसमी सब्जियां और दही का सेवन आम बात है। दक्षिण भारत में दही चावल, नींबू चावल और हल्के मसालों वाला भोजन गर्मियों के लिए बेहद ठीक माना जाता है। और इन सभी व्यंजनों की एक खास बात यह है कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ पचने में हल्के होते हैं और शरीर को मौसम के अनुसार संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसलिए इस गर्मी फास्ट फूड की बजाय अगर घर की पारंपरिक और मौसमी रसोई को अपनाएं तो स्वाद भी मिलेगा, सेहत भी रहेगी और भारतीय खाद्य परंपरा से जो जुड़ने का सुख है वो भी मिलेगा।

और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि गर्मी में पेड़ पौधों का ध्यान भी आप ही को रखना है। सुबह जल्दी या शाम को सूर्यास्त के बाद ही पौधों को पानी दें। दोपहर में पानी देने से बचें क्योंकि भाप बनकर जल्दी ही उड़ सकता है पानी। गमलों की मिट्टी पर सूखी पत्तियां, घास या नारियल के रेशे बिछा सकते हैं, इससे नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है। वहीं तेज धूप से बचाने के लिए छोटे पौधे जो रहते हैं उन पर ग्रीन नेट या सूती कपड़े की हल्की छाया करें। मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, जरूरत से ज्यादा पानी भी पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और घर से यदि आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतल में छोटा सा छेद करके उसे उल्टा गमले में लगा दें, इससे धीरे धीरे पानी रिसता रहेगा और पौधे को पानी मिलता रहेगा। एक मोटी सूती रस्सी या कपड़े की पट्टी पर एक सिरा पानी की बाल्टी में दूसरा गमले की मिट्टी में रखें, इससे पौधों को धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो पड़ोसी या किसी परिचित से पौधों में पानी देने का आप अनुरोध भी कर सकते हैं। गर्मी में पौधों को समय समय पर हल्की फुहार से भी ताजगी मिलती है। वहीं पक्षियों के लिए घर की छत, बालकनी या आंगन में मिट्टी के बर्तन में साफ पानी तो आप रख ही रहे होंगे, क्योंकि ये बात तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आए दिन आपको याद दिलाई जाती ही रहती है। तो पक्षियों के लिए दाना भी रखें, गर्मियों में उन्हें भोजन और पानी दोनों की ही जरूरत रहती है। वहीं जो आसपास जीव घूमते हैं उनके लिए भी किसी सुरक्षित स्थान पर पानी का बर्तन रखें, या कुछ अगर हो सके तो भोजन की भी व्यवस्था करें। आपको दुआएं मिलेंगी जरूर। और यदि घर के आसपास खाली जगह हो तो एक छायादार पौधा भी तो लगा सकते हैं। और आज लगाया गया पौधा आने वाले वर्षों में अनेक लोगों को छाया देगा, जो कि एक अच्छा काम होगा। और वहीं पानी की बर्बादी ना करें। सब्जियां या फल धोने के बाद बचा हुआ पानी, साफ पानी जो रहता है, उसको पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और गमलों को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिले लेकिन दोपहर की जो तेज धूप है वो सीधी उन पर ना पड़े। बच्चों को भी पौधों की देखभाल की आदत डालें। गर्मियों की छुट्टी में उन्हें रोज पौधों में पानी देने और पक्षियों के लिए पानी भरने और पशु पंछी जितने भी हैं उन सभी के प्रति भी उनको जिम्मेदारी के साथ जो जिम्मा दिया जाए वो भी आप ही का जिम्मा है, क्योंकि जो संवेदनशीलता है वो सिखलाई नहीं जाती, किसी किताब में पढ़ाई नहीं जाती, वो सिर्फ आपके जो काम रहते हैं उनके जरिए ही आप आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको सिखा सकते हैं। अगर एक कटोरा पानी या एक पौधा, एक छोटी सी देखभाल किसी के लिए कुछ अच्छा साबित हो सके, जीवनदायी वो बन सके, तो क्यों ना इस काम को किया जाए। और अब एक गीत सुना जाए।

0: You know that thing must be 100 years old.
1: तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी श्रोताओं का जो भी माध्यम रहेगा कहने का अपनी प्रतिक्रियाओं को, वो आपके लिए हम आपके लिए एड्रेस बताए देते हैं कि आप अपनी बातों को अपने विचारों को हम तलक साझा कर सकते हैं। आपकी बात akashvani@gmail.com पर, और जो भी सुझाव रहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया रहती है कार्यक्रमों के प्रति, या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो उस सब के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। और गर्मियों में रखिए अपना बेहद ख्याल। इसी सब के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस मस्ती भरे गीत के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात अब सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पी पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
7: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
6: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advance contingency plans for low rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
8: The Agriculture Minister gave a clear message that protecting farmers' interest is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
6: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. The Supreme Court today sought response from the centre and states on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justice V. Mohana issued notices to the centre and all states and union territories. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles or EFR will soon be revived, with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursang under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. He alleged that the previous state government led by Mamata Banerjee had frozen recruitment into the Eastern Frontier Rifles. The Chief Minister said that EFR, once regarded as a historic force, had been reduced to only two battalions during the previous regime. Mr. Adhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gorkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we will focus on Narendra Modi government's zero tolerance policy against terrorism.
9: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने।

0: इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो जरा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिज

0: आई।
1: हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने और

सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर

0: बनाना ना।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्म।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और कार्यक्रम है चांदनी रातें, आपके भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ और आपके भेजे हुए गीतों की फहरिस्त के साथ हाजिर हैं हम। स्वीकार कीजिए बहुत ही प्यारा सा नमस्कार और कार्यक्रम में पढ़ना शुरू करते हैं आपके भेजे हुए संदेशों को। तो पहला व्हाट्सएप मैसेज, फरमाइशी मैसेज हमें मिला है जलालाबाद शामली उत्तर प्रदेश से हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और सयान मंसूरी। अगला मैसेज है हमारे पास करणवीर हाउस भूचों कैचिया भटिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिज्योत। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं बड़ा बम चौक खंडवा से ममता, बमारकंडे, संजय और बेबी किट्टू। अगली ख्वाहिश आई है हमारे पास नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सेक्टर 67 मोहाली पर चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज मिला है। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं अर्चना ताई गोंडाने, हीरा मणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, राजीव वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। अगली ख्वाहिश आई है हमारे पास जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं ग्राम बहरामपुर टेमा से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, अमित, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, ऋषिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। और अगले मैसेज को पहुंचाया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना ने। अगले फरमाइश करता श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शर्मा, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पांडर कबड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनुश्री बुरांडे और बलार बलहार शाह से हैं सूरज, प्राची और एकलव्य लोंढे। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं सुधा शर्मा और अनामिका शर्मा। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश पहुंची है उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। अगले मैसेज को हमें पहुंचाया है खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। और अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। अगली फरमाइश है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मौरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष जंगेल, साथ है नंदिनी जंगेल। धंधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता है गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परीर, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। और आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म है गीता मेरा नाम।

0: सर्वज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरभ और निवान शर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार और विनीत कुमार वर्मा साथ हैं। सोनम वर्मा प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से हैं। सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव जालना शहर से हैं। सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी। सीता मणि विहार से हैं। मुसरत जहानाज, तलस जहानाज, फरहत जहां, रिफात जहां, रिफत जहानाज, नुजहत जहां, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज।

और अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी, छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश सावले पाटिल, ये देखिए यही मैसेज है फिर से। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लला, फरहान लला, समीरा, आजमीन और गुड़िया। दंतरेगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखीलाल वर्मा का मैसेज मिला है। मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। अगले मैसेज को हम तक पहुंचा है बांडी वाली फाजिल का पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी ने। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं गाँव टोरों वाले नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियम, प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम और वामिका और वाणी थांदी। गांव जोगी वाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण का मैसेज मिला है। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी और तानिया नारंग। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं आप सभी नलेश्वर नगर नवरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नुहाकर, निर्मला और विशाल नुहाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहरकर। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से ख्वाहिश पहुंची है लालगिरी स्वामी गोस्वामी, हेमलता, हिना और हर्षित और साथ हैं खुशी गोस्वामी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायड़े, वसंतराव भोजनी और निवृत्ति ओड़ा आड़ोकार। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर का मैसेज मिला है। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के हैं आप सभी श्रोता। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष का मैसेज नजर आया। और अनारगरी बाजार जगराव से मैसेज पहुंचा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और कुमारी पूजा खटक। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत प्रणाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म है सौगंध, गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। अगले मैसेज में हैं हमारे पास हमारे आप सभी श्रोता धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और अयान बाबू का मैसेज मिला है। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और साथ हैं नदीम पटेल। मोहाली पंजाब से मैसेज पहुंचा है बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की ओर से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा मस्किन, गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली से। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश व भुवेश कुमार काम्बोज की फरमाइश पहुंची है। लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। आप सभी हैं हमारे श्रोता गोंदर करनाल से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल रॉय। अगले मैसेज में हैं कहरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। अगले ख्वाहिश पहुंची है हनुमानगढ़ राजस्थान से, गांव है कलाना, तहसील भादरा, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सदीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। अगले मैसेज को पहुंचाया है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा ने पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, रही सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकाश गवहानकर और टुक टुक और साथ हैं अर्जुन। गांव का डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। अगले मैसेज में हैं हमारे पास अभी आप सभी श्रोता जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर बनी महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, फिल बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता और पीहरा बाजार झुमरी तलैया। ये पहले जो मैसेज था वो है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से और पीहरा बाजार झुमरी तलैया से हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुनि देवी शाह, जयप्रकाश साव, वसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश सोनू, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बड़बीर सिंह का मैसेज है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़ के। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं आप सभी श्रोता हमारे चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा, खुशदेव, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, खुशदेव, सुनीता रानी, अर्जू पप्पू और हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, खुशदिल संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। झज्जर हरियाणा से फरमाइश पहुंची है बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक भाटिया की ओर से। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीना जी और स्वप्निल धाड़े। अगले मैसेज में है हमारे आप सभी श्रोता। मित्रनगर बीर शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति और वैभव शिंदे। बीशर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्री, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोल और पी वी कुल थे। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से हैं रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया और गुरदीप, साथ हैं कीरत अवाना। गांव दंतरेगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, नीलावती, वीना, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। अगले मैसेज को पहुंचाया है हमारे पास गांव सिली कला जिले यमुनानगर हरियाणा से जय सिंह काम्बोज, विजय सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान और खुशी चमरौड़ी ने। मजनी कटीरा दिल्ली से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।
अब देखिए ये जो इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख भेजा है, तो देखिए ये सिर्फ फरमाइशी गीतों के लिए है ये प्लेटफॉर्म, और आप यहाँ पर इतने लंबे लंबे मैसेजेस भेज रहे हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आप ही का टाइम ज़ाया होता है, आप ही के नाम कम पढ़े जाएंगे। जमशेदपुर झारखंड से ही सुपाही साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद्र जी, अगले और आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर को। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है आप बीती।

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। अगले मैसेज में हैं लोकू करणी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना और आलिया अंसारी। अगले मैसेज को पहुंचाया है फुलगांव निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद वाहिद रूमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, जुनैद, जुबैर, मुकरम, नुमान, फुरकान, जाकिर और फाजिल। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। नई बस्ती गंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। सिडको रोड, सिडको न्यू संभाजी चौक, सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा गायकवाड़, दीपांजलि, दिशा बागमारे और शशांक बागमारे। अगले मैसेज में हैं मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट बिजनौर के श्रोता मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और साथ हैं हिना कौसर। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। फाजिल का पंजाब से मैसेज पहुंचा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल, शालिनी टिवानसी खेड़ा की ओर से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी मोहम्मद, अब देखिए ये दूसरे नंबर से सेम मैसेज आ रहा है तो ये शामिल नहीं किया जा सकता। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमापुरी, पालीपुरी और सुनील पाठक। अगले मैसेज में हैं हमारे पास हमारे आप सभी श्रोता शास्त्री नगर वीर शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सायराज और विशाल सबकाल। अगला मैसेज है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की ओर से। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई सिल्लौड़ छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोड़के वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के का मैसेज है। माल्यान चर्धना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन। अगले मैसेज में हैं पारसमणि रेडियो श्रोता संघ क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। लाल माता सुदामा नगर रतनाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदी बाई बागरी। और अगला मैसेज है गांव डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर। ये मैसेज देखिए पहले शामिल किया जा चुका है तो आपसे वही रिक्वेस्ट हमारी कि आप बार बार अपने मैसेजेस ना भेजें, एक बार अगर भेज चुके हैं आज दिन भर में तो अब दोबारा से ना भेजें। अजी

अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना का मैसेज है लदावली जिला मुरादाबाद से। अब वो मैसेजेस आ रहे हैं अब हमारे पास जिनको कि हम पहले शामिल कर चुके हैं। गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन और मनकीरत। साथ हैं मनराज। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। और आप सभी की फरमाइश पर है फिल्म मंगू का गीत, आवाज़ है शमशाद बेगम की। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, और अगले मैसेज में हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप यमेकर। अगले मैसेज को पहुंचा है खेल बाजार पानी पसे नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल और डिगू भाविक सिक्का। श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से पत्रकार हरिभाऊ बिड़वे, अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़वे का मैसेज है हमारे पास। पश्चिमी मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से है।

विजय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी। पाकुड़ झारखंड से फरमाइश पहुंची है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सुता सुवर्णवानंद और सत्यमानंद। बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और साथ हैं गुड्डी भगत। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत। अगले मैसेज में है फुलचिंचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद मुलानी, नसीर, बानुबी मुलानी और बादशाह मुलानी और साथ ही है पूरा मुलानी परिवार। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी। अगले मैसेज में हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत, रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद। सारंगपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। अगला मैसेज है हमारे पास पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू की ओर से। नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और साथ हैं सीता और गीता। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना का मैसेज पहुंचा है। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सर, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम और अदीब। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोणे, योगिता, प्रियाली और पार्थ हांगोणे और सारा ही परिवार है इनों का साथ में। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि और देवाश्री। छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजली, सोहम, सदानंद विराज, स्वीटी, अंशुम और बेबी ओवी। दीवान रेडियो लिसनर्स क्लब जवानी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश, उर्मिला और दीपक, स्वाति जयसवाल। कमरिया जमशेदपुर से हैं विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जयसवाल। अगले मैसेज में हैं गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जयसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जयसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से हैं विजय और सरोज जयसवाल, चकिया बाजार चंदौली से ही हैं सुमन और सुंदर जयसवाल। दुर्गावरणी हांसी के श्रोता हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ हैं बब्बू और डब्बू। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का मैसेज पहुंचा है। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियास हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी। अगले मैसेज में हैं नजफगढ़ जयविहार से शाहरुख फारूक, शबनम और शहनाज। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु का मैसेज मिला है। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकिरत और साथ हैं गुरशबद सिंह राहुल। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा संधू और मैक्स। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का मैसेज मिला। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर और जग्गी दुआज। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का मैसेज है। और हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत। शकील बदायूनी की शब्द रचना है, संगीतकार हैं हेमंत कुमार और फिल्म है बिन बादल बरसात।

0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
2: ये अब सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहूजा। नई बस्ती गंडवारा से ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं। और अब हमारे पास अगला मैसेज है हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश है, जिसमें पटियाली रोड गंजुड़वारा से हैं एम खुलल कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। अगले मैसेज में हैं बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। गांव हरुड़ी चांडिल झारखंड से हैं तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं दरियापुर बावली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। शेरी वडने रकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर का मैसेज है। गंजुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद यान और मोहम्मद उस्मान अंसारी। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के का मैसेज है रविदास चौक पंढरपुर सिटी से। और आप सबकी फरमाइश पर अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, पूनम फिल्म का नाम है और गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है अनु मलिक का।

और अब कार्यक्रम में आखिरी प्रस्तुति रहेगी आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा प्रीति और कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार अगला मैसेज है हमारे

मेरे पास हमारे आप सभी श्रोताओं का गांव पिपरलोड सर गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा अगले मैसेज में है। शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबर खड़े, शिव सागर और इंदिरा बाई खोबर खड़े, खांडवी बुल्ढाणा से दीपाली राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े थिलोरी अमरावती से हैं। सुनैना पवन भोंडे जेवरा हिसार से हैं। वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेंद्र मनोज भयान। अगला मैसेज है हमारे पास गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक और यश शर्मा। मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नाम देव का मैसेज है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन की फरमाइश पहुंची है। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल अकलम, नफीसा प्रवीण और जोहानुद हौदा। अगला मैसेज है पोटिया कला दुर्ग से है संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है मुकेश और शारदा को, फिल्म है अराउंड द वर्ल्ड। हसरत जयपुरी की शब्द रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

इसी गीत को सुनना चाहा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता होजा ने, और इसी के साथ इजाजत दीजिए आज इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच सुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishan multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishan project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kurseong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valor and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the joint crediting mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
2: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण विहीन संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।